एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आपके साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्स पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपने कुछ ही पलों के बाद पहले हिंदी में समाचार सुने थे और अब हमारे केंद्र से अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। और कार्यक्रम का नाम, जैसे कि आपको पता ही है कि हर रोज की तरह हम लेकर हाजिर होते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। तो श्रोताओ, कार्यक्रम अर्चना की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे इस भजन से।

अनूप चलूटा के स्वरों में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें केवल महसूस ही किया जा सकता है। विश्वास, प्रेम, करुणा और ईश्वर, ये दिखाई भले न दे पर जीवन को दिशा तो अवश्य देते हैं। आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं मुकेश के स्वरों में ये अगला भजन।

जब मन उलझनों से घिर जाता है तब भक्ति हमें भीतर की ओर देखने का अवसर देती है, याद दिलाती है कि हर समस्या से बड़ी परमात्मा की कृपा है और हर अंधकार से अधिक शक्तिशाली उसका प्रकाश है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अब लता मंगेशकर का गाया ये भजन।

साथियों, जीवन की भाग दौड़ में हम बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम कुछ पल रुककर अपने भीतर बसे हुए ईश्वर से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जब प्रयास करते हैं तो एक दिन प्रयास अवश्य सफल होता है और हमारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है। और जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो मन को एक अलग ही प्रकार की शांति प्राप्त होती है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मुकेश के स्वरों में ये भजन। ये भजन आप सुनेंगे नितिन मुकेश के स्वरों में।

अभी हमारी श्रोता नितिन मुकेश के स्वरों में भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, अब भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का समापन करते हैं सोनक अभिषेकी की गाई इस आरती से।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर

महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने। महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। प्रमुख स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर और साथियों के, और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का चिंतन कार्यक्रम।
1: ग्रह नक्षत्र आकाश में रहते हैं, वे पांच भौतिक अणु परमाणुओं से बने पिंड मात्र हैं। चंद्रमा पर पदार्पण करके तथा मंगल शुक्र आदि की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके इस तथ्य का पता लगा लिया गया है, उनमें न देवता रहते हैं और न प्राणी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र खगोल विद्या का महत्वपूर्ण अंग है, उसमें नक्षत्रों की गतिविधियों का बहुत बड़ा ज्ञान समाविष्ट है। परंतु पिछले 2000 वर्षों से उस विज्ञान में फलित ज्योतिष की एक नई शाखा रचकर भ्रम और अज्ञान फैलाने का एक कुचक्र रच दिया गया है। विवाह शादियों में जन्म पत्र मिलाने की प्रथा से असंख्य सुयोग्य जोड़े मिलने से वंचित रह जाते हैं। लड़के लड़की सुयोग्य हैं, संबंधी भी रजामंद हैं, पर पंडित जी ने पत्रा देखकर बता दिया कि विधि वर्ग नहीं मिलता, बस सारा आधार नष्ट हो गया। लड़की मंगली है, लड़का मंगली है, बस इतने भर से उनके विवाह शादी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाते हैं।

0: सुयोग बच्चे जो सुयोग साथी पाने के अधिकारी थे इस मूढ़ मान्यता के शिकार हो गए कि उनकी कुंडली में मंगल बैठा है। ढूंढ खोज में निराश अभिभावक जहां भी मंगली की तुक बैठती है वहीं विवाह की बला काट देते हैं। ये बच्चे आजन्म रोते बिलखते रहते हैं। हिंदू समाज का एक बहुत छोटा वर्ग फलित ज्योतिष पर विश्वास करता है। इस देश के निवासियों में अधिकांश की मान्यता अलग तरह की है। तब फिर क्या उन्हें ग्रह नक्षत्रों का कोप भाजन नहीं बनना पड़ता होगा? पिछले 2000 वर्षों से हम बौद्धिक गुलामी के बेतरह शिकार हुए हैं। स्वतंत्र चिंतन और विवेकशीलता को हम छोड़ बैठे हैं। फलस्वरूप हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परावलंबी होते चले गए। राजनीतिक पराधीनता इस बौद्धिक गुलामी की ही प्रतिक्रिया थी। विदेशियों के पैरों तले हम 1000 वर्ष तक इसीलिए दबे पड़े रहे थे कि स्वतंत्र चिंतन और विवेकपूर्ण दिशा निर्धारण की प्रवृत्ति ही खो बैठे। इस दुर्बलता का उदाहरण फलित ज्योतिष के रूप में देखा जा सकता है। जन्म पत्री में ही हमारा सब कुछ भूत भविष्य लिखा है। ये मान्यता हमारे पुरुषार्थ को निरर्थक सिद्ध करती है। मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से पराधीन और भाग्यवादी बनकर किसी अज्ञात के संकेत और सहयोग असहयोग से बधी हुई पतंग की तरह अपने को मानने लगता है। जीवन के प्रगति पथ पर यह स्थिति सबसे बड़ी बाधा और विपत्ति है। फलित ज्योतिष एक प्रकार से हमें भाग्यवादी पदावलंबी और नपुंसक बनाकर रख देती है। ग्रहों को शांत या अशांत कर सकना ज्योतिषी के हाथ में होता तो ये गर्मी के दिनों में सूर्य को जरूर शांत कर देता ताकि पृथ्वी पर सुहावना मौसम बना रहे। चंद्र आकर्षण को जरूर शांत कर देता ताकि समुद्र में ज्वार भाटे ना उठते और जहाज एवं नावों का आवागमन निरापद हो जाता। ग्रह नक्षत्रों के प्रति हमारी इस मूढ़ मान्यता से जितनी जल्दी छुटकारा मिल सके उतना ही श्रेयस्कर होगा।
1: अभी हमारी श्रोता राखी कटारा से सुन रहे थे भाग्यवादिता विषय पर विचार। कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नाम था चिंतन। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारे श्रोताओं को हम सबसे पहले बताएं, रात्रि 11:10 से 11:45 तक सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी संख्या 11 प्रसारित की जाएगी। रात्रि 9 से 10 तक बातों बातों में फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम रात्रि 8:00 से 8:45 तक आप सुनेंगे, चित्रपट संगीत, राजस्थानी लोक संगीत, माटी के स्वर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से 8:00 तक। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोकगीत या फिर लोक भजन। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा हर रोज की तरह 7:00 का। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2026-27 का खरीफ फसलों का MSP, और इसी के साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती से एक सजीव फोन इन किया जाएगा, यानी कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और हमारी श्रोता टेलीफोन कर सकेंगे और सीधे नरेंद्र कुमार भारती से जुड़ सकेंगे और अपने सवालों के जवाब जान सकेंगे। विषय रहेगा खरीफ फसलों के लिए जे

उर्वरकों की उपयोगिता। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता उठा सकेंगे शाम 6:05 पर, युवाणी कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे शाम 5:00। आज का संवाद होगा पढ़ते समय नींद और आलस ना आए इसलिए जरूरी बातें। इसी के अलावा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर प्रेरक प्रसंग भी आप इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगे। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम अपने श्रोताओं को बताएं प्रातः 9:55 से 11:00 तक माननीय सूचना एवं प्रसारण, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होगा। घर आंगन कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 9:30 पर। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आज चर्चा का विषय रहेगा और साथ ही श्रीमती इंदिरा यादव से की गई भेंटवार्ता, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत सुनेंगे आप प्रातः 9:10 पर और प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा महिलाओं में बार बार गर्भपात, कारण और इलाज। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी डॉक्टर राजश्री गोहतकर। आप इस कार्यक्रम में भी टेलीफोन कर सकेंगे और सीधे डॉक्टर राजश्री गोहतकर से बात कर सकेंगे। और श्रोताओं को बताएं प्रातः 7:00 आप सुनेंगे नमस्कार कोटा कार्यक्रम और प्रातः 7:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत युगल गीत। तो श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय। अब हमारी श्रोताओं को हम कुछ ही पलों के बाद लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र संस्कृत में समाचारों के लिए। करते हैं थोड़ा सा इंतजार।

0: एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनम् प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: मीडियावेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम तमाम सुनने वालों का इस प्रातकालीन सभा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर है वो कार्यक्रम जिसका रहता है उनको बेकरारी से इंतजार। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का नमस्कार कोटा कार्यक्रम।

श्रोताओ, सुबह की पहली किरण के साथ मानो प्रकृति का पूरा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। सूरज ने अपनी रोशनी का नेटवर्क सक्रिय कर दिया है, पक्षियों ने अपनी मधुर नोटिफिकेशन टोन को बजाना शुरू कर दिया है और हवाओं ने ताजगी का नया अपडेट जारी कर दिया है। और ऐसे में अगर मन की बैटरी को सकारात्मक विचारों से और दिन की ऊर्जा को मुस्कान से चार्ज कर लिया जाए तो पूरा दिन बिना किसी हैंग और रुकावट के शानदार तरीके से चल सकता है। हर सुबह हमें जीवन का एक नया इंटरफेस देती है जहां कल की गलतियों को डिलीट नहीं किया जाएगा बल्कि उनसे सीख लेकर आज को बेहतर बनाया जाएगा। तो अपने विचारों को पॉजिटिव मोड पर सेट कर लीजिए और उम्मीदों को वाईफाई से जोड़ लीजिए। उत्साह का सिग्नल आपको फुल रख रहा है क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम।

दोस्तों, सिस्टम चाहे कितना भी व्यस्त हो, उम्मीदों का सर्वर कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। और आपको बता दिया जाए, जी हाँ, हो चुका है प्रोग्राम नमस्कार कोटा का आगाज। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर तरन्नुम दास। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम सा।

और श्रोताओं, क्यों ना कर ली जाए अब आज के विचार की बात। तो आज का विचार कुछ यूं कहता है कि अंदाजा तो हमें हर बात का होता है, बस अक्सर दिल सच मानने से रोता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ साथ निभाता है, ये वक्त से पहले ही दिल समझ पाता है। किसी की खामोशी क्या कह रही होती है, नजरें भी कई दास्तान बयां कर रही होती हैं। झूठी मुस्कानों का राज भी दिख जाता है, सच्चा अपनापन दिल को छू जाता है। हम जानते हैं कब रिश्ते बदल रहे होते हैं, कब शब्द मीठे मगर इरादे खोटे हो रहे होते हैं। फिर भी हम उम्मीद का दीप जलाए रखते हैं, कुछ रिश्तों को दिल से बचाए रखते हैं, क्योंकि अंदाजा तो हमें हर बात का होता है, मगर भरोसा ही इंसान को इंसान बनाता है। इसलिए एहसास को समझिए, हर रिश्ते को सम्मान दीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ समझने से नहीं बल्कि महसूस करने से खूबसूरत होती है। और अब श्रोताओं से ये पूछ लिया जाए कि आप सुन रहे हैं ना नमस्कार कोटा कार्यक्रम को मन लगाकर, कान लगाकर। लेकिन हाँ, रखनी है आपको अपने रेडियो सेट की लाजमी सी आवाज इतनी कि ना हो किसी को एतराज, क्योंकि आ रहा है आपके पास एक बेहतरीन दिलकश सनगमा।

हमारे श्रोताओं को हम एक बार फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं नमस्कार कोटा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर 7:30 बजे तक। और श्रोताओं, अब आपको बता दिया जाए कि खबरें ये कह रही हैं कि ये गर्मी जो है वो उमस तपिश ने बेहाल कर दिया है। जून की तपती दोपहरी और बढ़ती उमस ने शहरवासियों का जीना मुहाल कर दिया है, और प्री मानसून की बारिश न होने से गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज होने के बावजूद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। हवा में नमी बढ़ने से उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया, और तभी तो अधिकतम तापमान रहा 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 30.4 डिग्री सेल्सियस।

प्रयास कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन ये भी मत भूलिए कि अपने जीवन को भी सुंदर जरूर बनाना है, बेहतरीन बनाना है और सफल भी बनाना है। हम सभी अपने जीवन को बेहतर, सुखद और सफल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा सोचिए यदि हमारी वजह से किसी और को भी अच्छा लगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और किसी का दिल बहुत खुश हो जाए तो फिर क्या बात है, और किसी निराश व्यक्ति को हौसला मिल जाए या किसी परेशान इंसान का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए तो जीवन की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है ना। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं होता, एक अच्छा शब्द, एक अच्छी और सच्ची प्रशंसा, किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ या मुश्किल समय में दिया गया साथ, ये छोटे छोटे काम किसी के जीवन में बड़ी रोशनी बन सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि समाज बदलने के लिए बड़े बड़े काम करने होंगे, जबकि सच ये है कि बदलाव की शुरुआत हमारे व्यवहार से होती है, छोटे छोटे कामों से होती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज से होती है। यदि हम अपने परिवार, पड़ोस, कार्यस्थल और समाज में प्रेम, सम्मान और संवेदनशीलता का वातावरण बनाएं तो अनेक जीवन स्वतः ही सुंदर होने लगेंगे। याद रखिए, फूल अपनी खुशबू केवल अपने लिए नहीं बिखेरता, दीपक केवल स्वयं नहीं जलता, वो आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। इसी तरह से एक अच्छा इंसान केवल अपने लिए खुशियों को सीमित नहीं करता, बल्कि दूसरों की खुशियों का भी कारण बनता है। तो क्यों ना हम ये संकल्प लें, और हाँ आज की बात से बहुत बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो सीख सकते हैं ना, कि हम किसी को हौसला देंगे, अपने व्यवहार से किसी को सम्मान देंगे, अपने कर्मों से किसी न किसी के जीवन में आशा का दीप जरूर जलाएंगे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो केवल हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बेहतर और खुशहाल बना दे। तो आपको ये तो पता है ना कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जिंदगी की असली खूबसूरती तो तब है जब आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी मुस्कुरा उठे।

और श्रोताओं, अब जैसा कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब बात कर रहे हैं आज की जो चर्चा का विषय है वो है दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाने का प्रयास।

अगर मंडा जी की आवाज में ये म्यूजिकल ट्रैक आपको पूरा नहीं सुनवाया जाता तो शायद ये मेरी तरफ से आपके लिए नाइंसाफी हो जाती, क्योंकि गीत जो था वो बहुत बेहतरीन था। और श्रोताओं, अब आपको बता दिया जाए कि सूर्योदय कल प्रातः होगा 5:35 पर और सूर्यास्त होगा आज शाम 7:21 पर।

और श्रोताओं, अब बात कर ली जाए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। ये दिन जो है ये सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं है बल्कि उन सभी का है जो जीवन में अनुशासन, संघर्ष और टीम भावना को महत्व देते हैं। खेल हमें सिखाते हैं गिरना, हार

नहीं है, गिरकर उठना ही असली जीत होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर बार कुछ नया सीख कर भी हम लौटते हैं। शायद यही वजह है, खेल केवल शरीर नहीं व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। आज हम जब देखते हैं कि बच्चे मैदानों से दूर हो रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन के बहुत बेहद करीब होते जा रहे हैं, तब खेलों का महत्व और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के विकास की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को उनके समय के साथ क्या मिल रहा है, क्या उनका समय जो वो मोबाइल पर दे रहे हैं उससे उनको कितना फायदा हो रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। खेल हमें जोड़ते हैं, स्वस्थ रखते हैं, एक एहसास कराते हैं कि प्रतिस्पर्धा का मतलब किसी को हराना नहीं है बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। और हाँ दोस्तों, मैदान की मिट्टी में जो सीख मिलती है ना, वो किसी किताब में वाकई नहीं मिलती है। जहाँ पसीना बहता है, लेकिन उसी पसीने से आत्मविश्वास का पौधा भी उगता है। तो याद रखिए, जो खेल होते हैं वो केवल पदक नहीं दिलाते बल्कि हमारे चरित्र को भी बनाते हैं। जी हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम ये जानें कि खेल जो हैं वो केवल रिकॉर्ड नहीं बनाते बल्कि इंसान को इंसान भी बनाते हैं। तो हमें ये बात जो है वो खुद समझनी चाहिए, सबको समझानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि जीवन में खेल और फिटनेस के लिए समय जरूर निकालें, बच्चों को मैदानों के लिए प्रेरित करें, खेल भावना को जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मैदान में जो पसीना बहाता है उसे जीवन की चुनौतियां जो हैं वो कभी भी डराती नहीं है।

और साथियों, अब बात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। जी हाँ, आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और जो आज का हमारा विशेष सेगमेंट है वो है सरफरोशी की तमन्ना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती। 11 जून को अमर क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई जाती है। ये काकोरी कांड के महानायक, प्रखर राष्ट्रभक्त और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। सरफरोशी की तमन्ना केवल एक कविता नहीं बल्कि आजादी के दीवानों की उद्घोष थी। इस रचना को मूल रूप से बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता संग्राम का नारा बनाने का श्रेय

राम प्रसाद बिस्मिल को दिया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये शब्द सुनते ही देशभक्ति की लहर मन में दौड़ पड़ती है। आज हम नमन करते हैं उस महान क्रांतिकारी को जिसने अपने विचारों, अपने साहस और बलिदान से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनका जीवन हमें सिखाता है सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और त्याग में दिखाई देता है। उन्होंने युवाओं के मन को एक ऐसी जो जलाई जो स्वतंत्रता की थी, जो आज भी प्रेरणा देती है। उनकी कलम में ओश था, विचारों में क्रांति थी और हृदय में मातृभूमि के लिए अथाह प्रेम। तो हम भी क्यों ना संकल्प लें ईमानदारी का, राष्ट्रहित का और मानवता के मूल्यों का, जिन्हें कि हम अपने जीवन में अपनाएंगे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और श्रोताओं, अब ले लिया जाए एक ब्रेक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और श्रोताओ अब आपको तो पता ही है, जी हाँ, और जो घड़ी है वो भी इशारा कर रही है कि आपसे इजाजत ले ली जाए, जबकि ना हमारा दिल कर रहा होगा इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का, ये आप मान सकते हैं, और ना ही आपका, लेकिन वक्त का तकाजा है, और वक्त का तकाजा जो इंसान समझता है वो बहुत आगे बढ़ता है, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो इस कार्यक्रम से तो इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहना होगा कि आपको इस उमस वाली गर्मी में अपना बहुत ख़ास ख्याल रखना है, बहुत सारा ख़ास ख्याल रखना है, बुज़ुर्गों का और बच्चों का भी रखना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, और हाँ, अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना है, समय समय पर पानी ज़रूर पीते रहना है, अधिक पानी पिएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, आपको एक और ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़िंदगी होती है ना साथियों, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनमें हमें पहचानना होता है कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और जब उस रिश्ते की अहमियत की बात आती है तो साथ में ये भी बात आती है कि इसे हमें किस तरह से संभाल कर रखना है, और उस संभाल के रखने में बहुत सारे हिचकोले भी आते हैं, लेकिन उन हिचकोलों से पार हो करके फिर जो इंसान उन रिश्तों को बहुत संभाल कर अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है ना, वो उन रिश्तों के साथ बहुत लंबे समय तक बहुत प्यार से जीता है। बहरहाल, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले इतना ज़रूर कहना है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे भी और अपनों को भी। तो चलती हूँ, राम राम, दुआ सलाम, रखना दुआओं में याद, नमस्कार कोटा।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओ, आप सुनते हैं फिल्म संगीत युगल गीत। दो आवाजें, दो दिल और एक एहसास, शायद यही जादू होता है युगल गीतों का। जी हाँ, हम शुरू करने जा रहे हैं ये कार्यक्रम और आपसे है गुजारिश कि कीजिए स्वीकार एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। जब मेल और फीमेल या फिर दो और अलग अलग आवाजें एक साथ मिलती हैं तो फिर सिर्फ धुन नहीं बनती बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत संसार बनता है। और अगर वही

आवाजें मेल और फीमेल की हो तो फिर उस गीत में तो बेशक चार चांद लगने ही होते हैं। हिंदी सिनेमा के युगल गीतों ने प्रेम, तकरार, इंतजार और मिलन, हर भावनाओं को सुरों में पिरोया।

ये अगला गीत जो हमने लिया है वो लिया है 20 साल बाद फिल्म से। फिल्मी गीतों में एक बात होती है कि जब युगल गीत हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बातचीत एक दूसरे से कही जा रही है, जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा बोलती हैं। कभी नायक नायिका के मन की बात तो कभी सपनों और उम्मीदों का सुंदर संगम। आइए श्रोताओ सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को।

इस गीत के लिए बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। आइए श्रोताओ अब सुनते हैं अगला गीत। युगल गीतों में एक और खूबी हमें समझ में आती है कि जीवन के रिश्तों की भी झलक यहाँ दिखाई देती है। कभी रूठना मनाना, कभी छेड़छाड़, कभी प्यार का इजहार और कभी साथ निभाने का वादा। सलामी फिल्म से लिया हमने ये गीत कुमार सानू आशा भोसले की आवाज़ें।

श्रवण के संगीत निर्देशन में आशा भोसले, कुमार सानू ने गाया ये गीत और गीत की बोल लिखे मदन पाल ने। फिल्म का नाम सलामी। श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज गुरुवार है और आज प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। और आज के इस कार्यक्रम का विषय रहने वाला है महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। तो हमारे जो भी श्रोता इस संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं, सीधे स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर राजश्री गोहतकर से टेलीफोन करके बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 2941142, एसटीडी कोड 0744। तो सुनना ना भूले लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर प्रातः 8:15 से 9:00 तक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

दिल है तुम्हारा फिल्म का ये शीर्षक गीत आपने सुना अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार समीर और मौसीकार नदीम श्रवण। आइए श्रोताओ सुनते हैं फिल्म संगीत युगल गीत का अंतिम गीत। जब दो सुर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब संगीत और भी मधुर हो जाता है। युगल गीत हमें यही तो सिखाते हैं, जीवन की सबसे सुंदर धुनें अक्सर साथ मिलकर ही बनती हैं। ये अंतिम गीत हमने लिया है धड़कन फिल्म से, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजें। नगमणिकार समीर और मौसीकार नदीम श्रवण।

धड़कन फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत युगल गीत श्रोताओं अब संपन्न होता है, लेकिन अब आपको ये भी बता दिया जाए कि कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का आज का अंक। मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम प्रातः 8:15 पर लेकर हाजिर होंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर राशि गोहतकर स्टूडियो में रहेंगी उपस्थित, तो सुनना न भूले हमारा ये कार्यक्रम। और आपको अब हम लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़

0: नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारे

0: पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पतालों में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
4: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP।

0: माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है। खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और साथ ही FM 102 103.6 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं और हम एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत करते हैं और साथ ही आपके लिए लेकर हाजिर हैं अब आज का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड IVF सेंटर 12-13 आदित्य आवास बजरंग नगर कोटा। एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध। यहां पर IVF, ICSI, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, IUI, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों की तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320-711-960-22-36306। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी।
2: हेलो डॉक्टर सजीव फोन इन कार्यक्रम। तमाम सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मानव ईश्वर की वो कृति है जिसका मुकाबला किसी और कृति से नहीं किया जा सकता। और मानव संरचना जब जन्म लेती है तो वो जन्म लेती है एक स्त्री से, एक माँ से। और हर स्त्री का एक ख्वाब जरूर होता है कि वो एक संतान की माँ बने। और आज इसी विषय पर, ऐसे ही विषय की संतान माँ बनना और इसी के बीच कभी कभी बाधाओं का भी आना, और आज का जो विषय इस कार्यक्रम में चुना गया है वो है महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। तो आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए, आपके फोन कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कोटा शहर की जानी मानी शख्सियत, जानी मानी डॉक्टर, जो वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जब आज आपको उनकी आवाज हम सुनवाएंगे तो उनका नाम भी बताना बनता है। तो चलिए पहले आपको उनकी आवाज सुनवा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहिबा आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के इस स्टूडियो में। जी, तो अब हमारे श्रोता पहचान गए हैं, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा?
4: बिल्कुल अच्छे।
2: अब हमारे श्रोता पहचान गए हैं कि आपको जिनकी आवाज सुनाई दे रही है, आप हैं डॉक्टर राजश्री गोहतकर। तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
2: जी। जैसे कि डॉक्टर साहिबा, आज का जो विषय है वो है महिलाओं में बार बार गर्भपात और इसकी समस्या और डॉक्टर की यानी कि आपकी सलाह। तो जब बार बार गर्भपात होता है, जिसे हम गर्भपात कहते हैं, उसे आप एक आसान भाषा में कैसे समझाएंगी कि क्या होता है गर्भपात?
4: जी, तो गर्भपात की यदि हम मेडिकल लैंग्वेज में यदि परिभाषित करना चाहें तो गर्भधारण से लेकर के 20 हफ्ते तक जो गर्भ में पल रहा एम्ब्रियो है या भ्रूण है वो यदि एक्सपेल्ड हो जाए या बाहर निकल जाए तो उसे गर्भपात बोलते हैं। तो शुरू से लेकर के 20 वीक्स तक, 20 सप्ताह तक, 5वें महीने तक यदि गर्भाशय में जो पलता हुआ

0: है वो बाहर एक्सपेल हो जाए या बाहर निकल जाए तो उसे हम गर्भपात कहते हैं।
1: जी,
0: और यदि हम बार बार गर्भपात की बात करें जिसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, तो उसकी परिभाषा में ये है कि दो या उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम दो जो एबॉर्शंस होते हैं या गर्भपात होते हैं, उससे दो या उससे ज्यादा यदि गर्भपात बार बार हो रहे हैं तो उसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट एबॉर्शन बोलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने कहा कि 5 महीने तक
0: जी,
1: तो जो 5 महीने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो उसको हम क्या समझेंगे, कैसे समझें?
0: एक्चुअली 5 महीने के बाद ऐसा मानते हैं
1: जी,
0: मेनली 24 वीक्स जी, 6 मंथ के बाद
1: जी,
0: कि अब जो आधुनिक NICU वगैरह उपलब्ध हैं तो उसमें इसके बाद बच्चे को बचाने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए फिर आफ्टर 24 वीक्स हम इसको बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री टर्म बर्थ।
1: जी जी जी,
0: इसे हम एबॉर्शन में नहीं लेते हैं। एबॉर्शन का मतलब ये है कि 20 सप्ताह से पहले यदि जो होता है उसको हम संभावना बिल्कुल नहीं है कि हम उसको बचा सकें, उस बच्चे को
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उसको हम गर्भपात कहते हैं
1: जी।
0: और उसके बाद की जो कभी कभी हो जाती है 7वें महीने में 8वें महीने में, तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं
1: जी, जी।
0: मतलब टर्म फुल जो उसको कहेंगे 9 मंथ्स दैट इज टर्म, तो उससे पहले हो रही है तो इसलिए उसको प्री टर्म डिलीवरी
1: जी जी। अच्छा, तो ये कि जब 5 महीने के बाद में अगर जो समस्या आने लगती है ना उनको संभाला जा सकता है
0: जी,
1: ऐसा भी है
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब। और अपने श्रोताओं को भी हम कहना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम से यदि जुड़ना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपका है तो आप सीधे डॉक्टर राजश्री गोहतकर से बात कर सकते हैं। हमें हो रहा है आपके फोन कॉल्स का इंतजार, और हम अपनी खास तौर से अपनी महिला श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि आप झिझकिए नहीं। हो सकता है आपके परिवार में कोई बहू हो, कोई बेटी हो, जिनको आने वाले समय में आप ऐसी समस्या से बचाना चाहते हैं, तो इस संबंध में भी आप डॉक्टर साहिबा से सलाह ले सकते हैं। तो आपको झिझकना नहीं है, बल्कि एक अच्छी जानकारी आपके सवाल के जरिए और लोगों तक भी पहुंचानी है, तो आप हमसे जुड़िए, हमें टेलीफोन कीजिए 2941142, STD कोड आपको लगाना होगा 0744। इसी के साथ आ रहा है एक कॉल। हेलो
2: मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं कलाहंडी उड़ीसा से मोहित कुमार पटेल बोल रहा हूँ।
1: अच्छा जी, तो आप क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी जी जी
1: जी। तो विषय से संबंधित यदि आपका कोई सवाल है तो फिर पूछें।
2: जी डॉक्टर, मैडम को मेरा
1: जी
2: जी मेरा प्रश्न है कि दो महीने करने के बाद जो गर्भ नष्ट हो जाता है, तो वो कौन सा कारण है कि वो गर्भ नष्ट हो जाता है?
0: आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, पर जो मैं समझी आपने पूछा कि 2 महीने का गर्भ, यही पूछा आपने?
2: 2-4 महीने में जो गर्भ नष्ट हो जाता है तो कौन सा कारण है?
1: अच्छा, तो आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कारणों पे भी हम
0: आने ही वाले हैं,
1: ठीक है? तो आप सुनते रहिए लगातार जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहिबा। तो हम बात कर रहे हैं कि अब ये भी होता है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें जो होने वाला लॉस होता है और बाद में जो होने वाला लॉस होता है, उसके बारे में अब हम बात करें।
0: तो इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पहला जो अर्ली प्रेगनेंसी उसे कहेंगे 12 वीक्स तक, 12 सप्ताह तक
1: जी,
0: के जो हैं
1: जी,
0: उसे एक्चुअली प्रेगनेंसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर।
1: जी,
0: फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर अप टू 28 वीक्स, और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले अबॉर्शन है, अर्थात 12 सप्ताह तक जो प्रेगनेंसी वो यदि अबॉर्ट हो रहा है, वो गर्भपात हो रहा है, तो उसके कारण अलग होंगे, और 12 सप्ताह के बाद वाले जो हैं उनके कारण अलग होंगे।
1: अच्छा,
0: तो पहले हम 12 सप्ताह तक की बात करते हैं, जैसे अभी उनका फोन था भाई साहब का, तो उसमें
1: कॉल लेते हैं, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़।
1: जी स्वागत और आपको नमस्कार। अगर आपका विषय से संबंधित सवाल है तो

0: जी, हम ये मतलब थोड़े सी जानना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ कपल में मतलब जो उम्र का गैप होता है, क्या ये भी कुछ परेशानी का कारण होता है क्या?
1: उम्र का गैप मतलब मेल और
0: हाँ, जैसे
1: फीमेल
0: मतलब
1: के
0: जी, हाँ,
1: एज में
0: ठीक है,
1: ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, एक्चुअली यदि किसी के भी मेल या फीमेल किसी की भी एज यदि अधिक है तो डेफिनेटली ये परेशानी का कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अभी मैं वही बताने वाली हूँ कि जो अर्ली एबॉर्शंस होते हैं उसमें पुरुष के भी स्पर्म का रोल होता है। यदि उसके शुक्राणु हेल्दी नहीं है तो उसमें ये गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: अच्छा
1: ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद
2: जी मैम।
1: तो अर्ली एबॉर्शंस की हम बात कर रहे थे,
2: जी
1: तो उसमें 12 सप्ताह तक के जो एबॉर्शंस होते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट होता है ब्लाइटेड ओवम जिसे हम कहते हैं, या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, अर्थात प्रेगनेंसी तो लगी, थैली भी बनी, जिसे हम कहते हैं ना, थैली बनती है और उसके अंदर फिर भ्रूण विकसित होता है, वो थैली भी बनी लेकिन उसमें भ्रूण नहीं विकसित हुआ, तो उसे हम कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक या ब्लाइटेड ओवम फर्स्ट। सेकेंड होता है कि कभी कभी 1.5 महीना 2 महीना होते ही अपने आप एबॉर्शन हो जाता है, उसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन,
2: अच्छा,
1: जिसका हमको एग्जैक्टली हम ये बहुत पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनमें सोनोग्राफी भी नहीं हो पाती, 1.5 महीने हुए हैं 2 महीने हुए हैं और उनके बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या इम्प्लांटेशन फेलियर, अर्थात जो भ्रूण बना वो बच्चेदानी के अंदर की सतह पर प्रॉपर वे में इम्प्लांट नहीं हो पाया, तो उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। और फिर थर्ड होता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन अर्थात प्रेगनेंसी लगी, उसमें भ्रूण भी विकसित हुआ जिसे हम कहते हैं फीटल इको, वो भी आया, धड़कन भी आई, मतलब बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी भी आ गई, पर कुछ समय पश्चात वो कार्डियक एक्टिविटी या धड़कन खत्म हो गई, तो उसे कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के हैं 12 वीक्स तक के अबॉर्शंस, ब्लाइटेड ओवम, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और तीसरा मिस्ड अबॉर्शन, जिनमें कि गर्भपात हो जाता है। और एक होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, मतलब थ्रेटेंड मतलब डर है कि
2: डर
1: इसमें अबॉर्शन होगा,
2: जी
1: बार बार उसमें ब्लीडिंग होती रहती है, कभी पेन की कंप्लेन होती है, कभी बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुलना चालू हो जाता है, तो ये केसेस है थ्रेटेंड, मतलब थ्रेटेंड टू अबॉर्ट, इसमें हमको डर है कि ये केस अबॉर्ट हो सकता है, तो वो ये सारी स्थितियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार से होती हैं।
2: जी
1: और जो 12 वीक्स के बाद, मतलब 3 महीने के बाद जो अबॉर्शंस होते हैं उनके कारण अलग होते हैं। तो यदि हम पहले 3 महीने के अबॉर्शंस के कारणों को देखें तो उसमें जैसे मैंने बताया कि ब्लाइटेड ओवम फर्स्ट हम यदि वो लें कि सिर्फ थैली बनी, उसके अंदर भ्रूण का विकास नहीं हुआ, तो वो खाली थैली बनने का जो कारण होता है वो जेनेटिक होता है, अर्थात जो भ्रूण पल रहा है गर्भाशय के अंदर उसमें कोई ना कोई क्रोमोजोमल गुणसूत्र से संबंधित कोई ना कोई उसमें खराबी है, इसलिए इस तरीके का हुआ। और जब गुणसूत्र से संबंधित खराबी की हम बात करते हैं तो हमें उस समय सबसे पहला जो ध्यान आएगा वो यही आएगा कि या तो जो एग है, जो अंडा है, उसमें कोई खराबी है, मतलब जो फीमेल का फॉलिकल या एग बन रहा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या फिर स्पर्म में, मतलब पुरुष का जो शुक्राणु है उसमें खराबी होने से भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, उसमें एम्ब्रियो नहीं है, खाली थैली बनी है,
2: जी।
1: तो उसका 99% कारण कोई ना कोई जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है वो होती है। इसके बाद यदि हम आगे चलें कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, माने प्रेगनेंसी लगी और 1.5 से 2 महीने के अंदर ही ब्लीडिंग होकर के और वो एबॉर्ट हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन फेलियर, अर्थात जो भ्रूण बना वो बच्चेदानी के अंदर की सतह पर अच्छी तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाया, चिपक नहीं हो पाया और इस वजह से वो एक्सपेल्ड हो गया या वो निकल गया। फिर थर्ड आता है मिस्ड अबॉर्शन, अर्थात जिसमें बच्चे की धड़कन आ गई, जो कि हमारे नॉर्मली जो सोनोग्राफी होती है उससे हमें 6 सप्ताह 6 वीक्स पे हमें धड़कन दिखाई दे जाती है, तो धड़कन आ गई पर कुछ समय पश्चात, जैसे 8 वीक या 9 वीक या 10 वीक, इस इतने समय के पश्चात वो धड़कन अपने आप अंदर ही खत्म हो गई, तो उसे हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन।

0: तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं जिनमें हम यदि देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वापस जेनेटिक ही है। सेकंड इसमें है कोई यदि हमको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उस लेडी को, जैसे कि थायराइड है, उसकी जांच नहीं हुई और उसको थायराइड बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: तो उसमें मिस्ड अबॉर्शन हो जाएगा। डायबिटीज है तो भी उसमें मिस्ड अबॉर्शन हो जाएगा। फिर तीसरा है कि हम उसको यदि उस लेडी को खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे खून में थक्का बनने की शिकायत है, तो होता यह है कि जो भ्रूण पल रहा है उसको सडनली उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए थक्का बनने से या क्लॉट बनने से, तो एकदम सडन उसका हार्ट बीट चला जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि ट्रीटेबल हैं मिस्ड अबॉर्शन के। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि भ्रूण में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसके लिए जब हम डीएनसी करते हैं तो जो अंदर से निकलता है उसको हम जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो गर्भाशय में पल रहा भ्रूण उसमें किस तरीके की जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। और फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों का क्रोमोसोमल एनालिसिस, डिटेल्ड क्रोमोसोमल एनालिसिस, उसे माइक्रो एरे क्रोमोसोमल एनालिसिस बोलते हैं, वो कराते हैं, जिससे हमको ये पता लगे कि दोनों में से किस में जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो ये है 12 वीक्स तक के अबॉर्शन
1: जी।
0: और इसके बाद जो है आफ्टर 12 वीक्स से 20 वीक्स तक के जो है उनमें ज्यादा करके जन्मजात गर्भाशय में
1: जी
0: कोई संरचना में कोई प्रॉब्लम होने से होते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे जन्मजात बच्चेदानी के अंदर पर्दा होना जिसे हम सेप्टा बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो पर्दा बिल्कुल बीच में बच्चेदानी को दो में विभाजित कर देता है।
1: अच्छा।
0: तो भ्रूण आगे बढ़ ही नहीं पाता क्योंकि उसको वो जगह नहीं मिल पाती। और ये जो सेप्टा होता है या जो पर्दा होता है ये एवेस्कुलर होता है, अर्थात इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो जब भ्रूण पलता है और उस तरफ से जब उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है तो वो बंद हो जाती है, तो उस वजह से सेप्टा के केसेस में अबॉर्शन हो जाते हैं, एक तो जगह कम होने से और दूसरा ब्लड सप्लाई।
1: इसका समाधान
0: है बिल्कुल है। इसके अलावा जैसे कभी कभी जन्मजात ही जो बच्चेदानी है वो छोटी है, उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्नोमेट यूट्रस, उन केसेस में भी 12 सप्ताह के बाद 20 सप्ताह तक में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो कारण होता है कि कभी कभी जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, खुला हुआ है, वो वीक है, तो उस वजह से भी इस तरीके के अबॉर्शन
1: हो जाते हैं। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: अर्जुन दास बोल रहा हूँ से,
1: बालोतरा से। जी जी अर्जुन दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर विषय से संबंधित कोई सवाल है तो जरूर डॉक्टर साहिबा से आप बात कर सकते हैं।
2: जी
1: जी
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था, आईवीएफ से कराया था बच्चे के लिए, दो बच्चा हो गया उसमें 8 महीने बाद, पर वो बच नहीं पाया, क्या चक्कर था?
0: 8 महीने बाद जो बोला आपने उसको हम कहते हैं ना प्री टर्म डिलीवरी, तो वो प्रीटर्म डिलीवरी हुई इस वजह से हो सकता है कि बच्चा नहीं बच पाया होगा, क्योंकि लंग्स की मैच्योरिटी नहीं आ पाती, कभी कभी जो फेफड़े हैं बच्चे के वो मैच्योर नहीं हो पाते और उस वजह से ये प्रीटर्म डिलीवरी के बाद बच्चे को नहीं मतलब बचा पाए होंगे।
1: ठीक है अर्जुन दास जी,
2: धन्यवाद
1: जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिब, अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर से लौटते हैं अपने श्रोताओं के पास।
3: एक ही छत के नीचे निसंतानता से लेकर स्वस्थ शिशु जन्म तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध यहां पर। आईवीएफ, इक्सी, एडवांस लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, आईयूआई, कृत्रिम गर्भाधान तथा स्पर्म बैंक की सुविधा महानगरों की तुलना में कम खर्च में उपलब्ध। फोन 2320711 9602236306। ना रहे कोई घर खुशियों से खाली, हर आंगन में गूंजे किलकारी। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे राजदीप फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर एंड आईवीएफ सेंटर, 1213 आदित्य आवास, बजरंग नगर, कोटा।
4: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 88 शक्ति नगर, दशहरा मैदान, कोटा।

0: कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्ति नगर कोटा। कोटा आई हॉस्पिटल जहां बिना दर्द, बिना टांके और बिना पट्टी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन और मुड़ने वाले लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। कोटा आई हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पंजाबी द्वारा रेटिना से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और विश्व की सर्वोत्तम एलकॉन कॉन्स्टिलेशन मशीन द्वारा सर्जरी की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल में हाड़ौती की प्रथम और विश्व की सर्वश्रेष्ठ एलकॉन वेव लाइट EX500 लेसिक लेजर मशीन द्वारा चश्मा हटाने की सुविधा। कोटा आई हॉस्पिटल राजस्थान राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नेत्र चिकित्सा सुविधा के बिल पुनर्भरण हेतु अनुमोदित है। कोटा आई हॉस्पिटल जहां एक छत के नीचे आँखों की संपूर्ण जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा उपलब्ध। 1987 से आपकी सेवा में समर्पित अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त संस्थान कोटा आई हॉस्पिटल 88 शक्ति नगर कोटा।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत, और साथ ही आपको बता दिया जाए कि आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का हमारा विषय महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राशि गोहतकर। तो डॉक्टर राशि गोहतकर से इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी और बहुत लाभप्रद जानकारी आप अभी तक दे चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, जो अभी अपने कारण बताए उसमें एक सवाल मेरे जहन में आया, जिसे कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार में ये चाहत होती है कि अब संतान होनी चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की की उम्र कम होती है या कई लड़कियां कमजोर नजर भी आती हैं और कमजोर भी होती हैं। तो क्या आप मानेंगी कि कमजोर लड़कियां जो शरीर से कमजोर हैं उनको कितना खतरा है?
2: कमजोर एक्चुअली यदि हम इसको बोलें वीकनेस
1: जी,
2: तो वीकनेस किस प्रकार की है पहले तो वो हमें देखना चाहिए
1: जी।
2: यदि ऐसा है कि हीमोग्लोबिन कम है, स्पेशली यदि हम प्रेगनेंसी की बात करें, तो यदि मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन कम है तो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिक्कत आएगी, क्योंकि एनीमिया होगा तो एनीमिया की वजह से बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगी, माँ के लिए भी प्रॉब्लम होगी, जल्दी डिलीवरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे हमें ट्रीट करना चाहिए। इसी तरीके से आपने यदि कमजोरी बोला तो डेफिनेटली हमको उसके सारे टेस्ट जैसे थायराइड है, डायबिटीज है या और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं, वो देखना चाहिए। विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल, ये क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत कम रहते हैं, और जब प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चा पलता होता है तो वो भी कैल्शियम की डिमांड होती है, बच्चे की भी और माँ को भी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए उस समय कैल्शियम की जरूरत होती है। बाद में ड्यूरिंग लैक्टेशन जब माँ स्तनपान करती है तब भी उसके लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए यदि पहले से ही ये सारी कमजोरियों को हटा दिया जाए तो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम्स कम होंगी
1: जी। डॉक्टर साहब कॉल आ रहा है, हेलो
3: हेलो
1: जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए आप प्लीज।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
3: जितेंद्र बात कर रहा था मैं।
1: जितेंद्र जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब सुन रही हैं आप, थोड़ा सा और थोड़ी अपनी वॉल्यूम को बढ़ाइए प्लीज।
3: मैम सेट पूछना था
1: जी,
3: हमारे घर में कोई पेशेंट है मैम, उसकी क्या है मैम, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई, बच्चा दानी कमजोर बता रहे हैं डॉक्टर, क्या है जो टॉयलेट आता है ना मैम।
1: हाँ बोलिए ना, हेलो हेलो, शायद तो कॉल कट गया है
2: जी।
1: लेकिन जितेंद्र जी का एक सवाल तो आपने सुन लिया था शायद, तो क्या वो भी एक कारण बन सकता है?
2: जी, मांसपेशियां कमजोर उन्होंने बोला था, यूट्रस की मांसपेशियां कमजोर
1: जी।
2: तो डेफिनेटली ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें यूट्रस जो है उसके मायोमेट्रियम जिसे मांसपेशियां कहते हैं और इन्हीं में फैलाव आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो कमजोर, मेरे ख्याल से वो ये बोलना चाह रहे हैं कमजोर इन द सेंस की जो यूट्रस है वो साइज में छोटा है या उसके जो मस्कुलेचर है वो गड़बड़ है, तो ये कुछ कारण होते हैं। उसमें होता है एक डिजीज होती है, उसे कहते हैं हम एडिनोमायोसिस, जो कि मस्कुलेचर में ही होती है यूट्रस के, और इस इन कंडीशंस में भी पूरा 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी नहीं जा पाती है। ऐसी तरीके से कुछ यदि उसमें ट्यूमर हो मांसपेशियों में जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, फाइब्रॉइड यूट्रस, उस

0: कंडीशन में भी पूरा 9 मंथ्स तक बहुत बार नहीं जा पाती, बहुत बार पहुंच भी जाती है
1: जी।
0: तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि यूट्रस के मांसपेशियां या यूट्रस के मस्कुलेचर से रिलेटेड हैं, और इनमें भी प्रीटर्म डिलीवरी या एबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा, हम अपने श्रोताओं से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमें टेलीफोन कीजिए 2941142 पर एसटीडी कोड 07444 लगाकर, क्योंकि बहुत ही खास विषय है आज का, महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। इसी के साथ एक कॉल। हेलो।
2: हाँ, मेरा कॉल कट गया था।
1: हाँ, आपका एक सवाल का जवाब तो डॉक्टर साहिबा दे चुकी हैं, अब आप दूसरा सवाल कीजिए प्लीज।
2: ऐसे आ जाता है, मतलब उनको पता भी नहीं लगता, बहुत सी बार तो ऐसे कपड़ों में आ जाता है मैम।
0: तो
2: हो रही है
0: ये गर्भ
2: 40 वर्ष
0: जी, ये एक्चुअली गर्भपात से संबंधित तो नहीं है, ये इसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्थात
2: उन डॉक्टर साहब ने भी बोला था तो ऑपरेशन से ठीक होगा, दूसरे डॉक्टर साहब ने बोला कि दवाई से ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में?
0: यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खांसने छींकने से भी पेशाब निकल जाता है, तो उस जी तो उसको कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो देखिए उसका वो कितना ग्रेड का है, कितना उसका लेवल है, उसको देख करके डिसाइड होता है कि क्या दवाइयां लगेंगी। यदि वो बिल्कुल कम उसमें है, स्टेज में है, बिल्कुल माइल्ड है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर सर्जिकल मतलब ऑपरेशन द्वारा ही इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है।
1: इस समस्या के लिए तो डॉक्टर साहिबा से मिलना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है जो आप पूछ रहे हैं सवाल, इससे संबंधित डॉक्टर साहिबा नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो गायनी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो डॉक्टर साहिबा ने आपको समझा दिया है कि ये जो समस्या है ये इस विषय से भी हटकर है, ठीक है। तो आप जानकारी लीजिए कि कौन सी डॉक्टर साहिबा को दिखाना है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, अब जब अभी आपने एक एक, एक कारण बताया था कि एक पर्दा बीच में होता है, तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि उसका समाधान क्या है
0: जी। जी, तो जन्मजात जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं
1: जी,
0: उनको हम कहते हैं कंजेनाइटल एनामली, मतलब बाई बर्थ। तो उसके उसमें क्या होता है कि जैसे पर्दा है मान लीजिए, तो पर्दे को निराकरण के लिए हमको दूरबीन द्वारा उस पर्दे को हटाने का प्रोसेस करना
1: होगा। हेलो हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? कॉल कर गया है जी मैम। हम
0: तो उसमें हम दूरबीन द्वारा, तो दूरबीन जो होती है, दूरबीन के ऑपरेशन जो होते हैं
1: जी,
0: वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है हिस्ट्रोस्कोपी और एक होता है लेप्रोस्कोपी
1: जी। जी,
0: हिस्ट्रोस्कोपी अर्थात बच्चे दानी के अंदर नीचे से एक बहुत पतली सी दूरबीन डालते हैं
1: जी, जी,
0: और उसके द्वारा ऑपरेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। और लेप्रोस्कोपी जो हम पेट से दूरबीन डाल करके
1: अच्छा,
0: और फिर उसके द्वारा ऑपरेशन करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो जो बच्चेदानी के अंदर की सतह की जितनी भी परेशानियां हैं उसके लिए हम हिस्ट्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं।
1: अच्छा,
0: तो जो पर्दे की बात कही तो उसको हम हिस्ट्रोस्कोपिकली बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल करके और जो वो सेप्टा या पर्दा है उसको पूरा रिसेक्ट करते हैं या हटाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसको कहते हैं सेप्टल रिसेक्शन
1: जी। जी,
0: और बहुत कॉमन है ये सेप्टा।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, बहुत मतलब मुझे लगता है 25 सालों में हमने कम से कम एक 700-800 ऑपरेशन तो ऐसे किए ही होंगे
1: जी। जी, जी,
0: जो कि सेप्टा के थे, सेप्टल रिसेक्शन बोलते
1: अच्छा,
0: हैं उसको।
1: अच्छा,
0: और एक बार सेप्टा हटाने के बाद क्योंकि फिर पूरी बच्चेदानी एक हो गई, उसका साइज नॉर्मल हो गया, तो फिर पूरा 9 महीने तक का गर्भ आसानी से हो जाता है
1: जी। जी, जी,
0: तो ये हुआ एक सेप्टा
1: जी।
0: दूसरा, हमने और भी कुछ बातें बोली
1: जी, जैसे कि मुंह छोटा है।
0: हाँ जी, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है।
1: खुला हुआ है,
0: हाँ, हाँ। तो क्या होता है कि जैसे ही गर्भ में बच्चा पलता है और उसका साइज बढ़ता है, और यदि मान लीजिए बच्चेदानी का मुंह कमजोर है या थोड़ा खुला हुआ है, तो वो एकदम से डायलेट हो जाएगा, खुल जाएगा और फिर वो जो भ्रूण है या प्रेगनेंसी

0: ये वो पूरी एक्सपेल हो जाएगी, पूरी बाहर आ जाएगी।
1: जी,
0: तो ये जो होता है इसके लिए दो प्रकार के इसके इलाज होते हैं। एक तो हम प्रेगनेंसी के दौरान ही तीसरे महीने पर 12-13 सप्ताह पर नीचे से बच्चेदानी के मुंह को टाइट करने के लिए एक स्टिच लेकर के उसको टाइट करते हैं।
1: अच्छा।
0: उसको कहते हैं मैकडोनाल्ड स्टिच।
1: अच्छा।
0: तो वो तो हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि ये स्टिच लगाने के बावजूद भी अबॉर्शन हो जाता है। उसका कारण यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है और मान लीजिए बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसकी लेंथ भी कम है और वो थोड़ा खुला भी हुआ है, तो 12-13 सप्ताह तक में उसकी लेंथ जो है वो और कम हो जाती है। तो जो हम स्टिच नीचे से लगाते हैं वो एग्जैक्टली उस जगह पर नहीं लग पाता जहां हमको लगाना है। जो यूट्रस होता है और बच्चेदानी का मुंह होता है तो उसका जो कनेक्शन है सबसे ऊपर, उसे कहते हैं इंटरनल ऑस, अर्थात यूट्रस जहां बच्चेदानी के मुंह में खुलता है उसे कहते हैं इंटरनल ऑस। तो वहां जाकर के वो स्टिच लगाना होता है।
1: अच्छा।
0: कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिनमें ये सही जगह पर नहीं लग पाता और इस वजह से लगाने के बावजूद भी अबॉर्शन हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो उन कंडीशन में हम प्रेगनेंसी लगने से पहले या इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी लेप्रोस्कोपी द्वारा, मतलब अभी मैंने हिस्टेरोस्कोपी की बात करी, अब मैं लेप्रोस्कोपी बता रही हूँ, अर्थात हम पेट से दूरबीन डालकर और बच्चेदानी के मुंह पर, अर्थात इंटरनल ऑस जो मैं बता रही हूँ, वहां पर एक टेप द्वारा उसे टाइट करते हैं। तो इसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक इंटरवल सर्वाइकल सर्कलाज या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लैप्रोस्कोपिक सर्वाइकल सर्कलाज। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये लगाने के बाद जो बच्चेदानी के मुंह की वजह से अबॉर्शंस हो रहे हैं या जल्दी डिलीवरी हो रही है उससे आसानी से बचा जा सकता है। और पूरा जब टाइम हो जाता है, मान लीजिए 36 वीक्स या 9वां महीना लग गया, तो यदि हमने नीचे से लगाया हुआ स्टिच है तो हम उसको निकाल देते हैं, जिससे फिर आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जो लैप्रोस्कोपिकली जो हमने ऊपर से लगाया हुआ स्टिच, हम उसे निकाल नहीं पाते हैं।
1: अच्छा।
0: और फिर उस कंडीशन में हमको सिजेरियन डिलीवरी करके और फिर ड्यूरिंग सिजेरियन हम उसको निकालते हैं।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे केसेस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं।
1: अच्छा।
0: कि जिनमें नीचे से स्टिच लगाने के बावजूद भी पूरा 9 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं पहुंच पाती है और प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है।
1: मैडम, ये कॉमन होने के कारण
0: एक्चुअली जो सर्वाधिक मुझे जो लगता है
1: जी,
0: कि बच्चेदानी के
1: मुंह का अनुभव,
0: वो सबसे ज्यादा है इन्फेक्शंस।
1: Okay.
0: जब भी कोई वजाइनल इन्फेक्शन होता है और वो ऊपर सर्विक्स तक जाता है तो बच्चेदानी का मुंह डायलेट हो जाता है
1: जी।
0: दूसरा, जो बच्चेदानी के मुंह की लेंथ कम होना जो मैंने बताया, वो बहुत बार जन्मजात भी होता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बार बार एबॉर्शंस होने से, बार बार डीएनसी या इस तरीके के प्रोसीजर्स होने से भी बच्चेदानी का मुंह कमजोर हो जाता है। तो ये सब कारण है जिनमें ये मुंह जो है बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं, वो कमजोर होने से प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, अब हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर से लौटते हैं श्रोताओं के पास। लेकिन श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे पास वक्त जो है वो ज्यादा नहीं बचा है, तो अगर आप इस विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, डॉक्टर साहिब से बात करना चाहते हैं, तो आपको देरी नहीं करनी है। अब हमें टेलीफोन करना है 2941142 पर, एसटीटी कोड लगाना है 0744। तो महिला श्रोताओं से भी अनुरोध है कि अपनी झिझक को छोड़िए, यदि दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो डॉक्टर साहिबा से जुड़िए और अपने सवाल को जरूर पूछिए।
2: प्रोग्राम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 88 शक्तिनगर, दशहरा मैदान, कोटा। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट, 5A10 रंगबाड़ी रोड, तलवंडी, कोटा।
3: लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।
2: जी हाँ, आप भी अपनी मुस्कान और हंसी से अब मोगरे के फूल बिखेर सकते हैं। कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं। रूट कैनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज। डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य

0: संपर्क करें। डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, मोबाइल 9928085808।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत। श्रोताओं को एक बार फिर से बताएं, आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। आज का विषय महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राशि गोहतकर। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल कि जब लगातार गर्भपात होता है तो आप ये जानती हैं कि आज के समय में हर कोई इलाज कराने के लिए भी एकदम से तैयार नहीं होता, क्योंकि पॉकेट पर जेब पर भार आता है। तो कौन कौन सी जांचें ऐसी होती हैं जो जरूरी हो जाती हैं कि इन्हें कराना ही चाहिए?
2: जी, तो यदि बार बार गर्भपात की समस्या है
1: जी,
2: तो सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है।
1: अच्छा,
2: हिस्ट्री मतलब हम उसको डिटेल में पूछते हैं कि जो आपके गर्भपात हुए वो कितने महीने पे हुए, आपकी सोनोग्राफी हो पाई थी या नहीं हो पाई थी। यदि सोनोग्राफी हुई थी तो हम उसकी रिपोर्ट देखना चाहेंगे
1: जी,
2: क्योंकि हमें इससे एक एग्जैक्ट बात पता लग जाएगी कि किस तरीके के हो रहे हैं, और फिर हम उसी के यदि जांचें कराएंगे तो जैसे आपने बोला कि लोड तो वो कम से कम होगा, क्योंकि हम यदि इस बात पे पहुंच सके कि किस टाइप के अबॉर्शन है, कितने ड्यूरेशन पे हो रहे हैं, तो हम मैंने जैसे बताया कि हर टाइम के हर जो प्रकार के अबॉर्शन है उनके कारण अलग अलग है, तो सिर्फ उसी कारण के लिए जानने के लिए हम जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है या स्पेसिफिक जांचें हैं वो करवाते हैं, और यदि हमको उनमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो ठीक। इसलिए ऐसे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे जो मरीज हैं, उनके लिए विशेष बात बोलना चाहूंगी
1: जी,
2: कि गर्भाशय में गर्भ ठहरने से पहले अर्थात प्रेगनेंसी होने से पहले
1: जी
2: इन चीजों का इलाज होना चाहिए।
1: अच्छा
2: जी, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी हो जाए और ऐसा कोई कारण है कि जिसमें ये हम नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो फिर वापस दिक्कत हो जाती है।
1: अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो,
3: हेलो जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: सत्यनारायण
1: जी। सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब आप सवाल रखे।
3: मेरा सवाल है कि जैसे कि बहुत सी महिलाएं धूमपान करते हैं, तम्बाकू गुटखा सेवन करते हैं, तो ये भी क्या गर्भपात का कारण बनता है?
2: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा
1: जी।
2: जो स्मोकिंग है या तंबाकू का सेवन है
1: जी,
2: ये सबसे पहले तो ये प्रेगनेंसी ही होने में दिक्कत कर रहा है, ये एक इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके बाद जो प्रेगनेंसी होगी उसमें बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने की ज्यादा संभावना है
1: जी,
2: तो उसकी वजह से उनके हमको बल्कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन एक होता है कि हमको वो अबॉर्शन कराने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जन्मजात बच्चे में कुछ खराबियां आ गई, तो ये बहुत बड़ा कारण है स्मोकिंग और जो तंबाकू सेवन है उसका।
1: ठीक है पोटर जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिला।
3: जी
1: जी जी, जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा, अब जैसा कि अभी आपने जांचों के बारे में बात की हम लोगों ने, तो मतलब ऐसी कौन सी स्टेज आए कि वो जाकर डॉक्टर से मिल ले
2: जी?
1: वो
2: जी, तो जैसे मैंने बताया कि दो अबॉर्शन, यदि दो बार गर्भपात हो गया है तो बहुत जरूरी है कि अगली प्रेगनेंसी लगने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, और जो आपके गर्भपात के समय या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी जो भी जांचें हुई हैं उनको लेकर के जाएं, जिससे हमको ये पता लगे कि जो दो बार पहले दो बार इनके अबॉर्शन हुए हैं उसमें क्या स्थिति थी, किस वजह से हुए या किस टाइप का अबॉर्शन हुआ, तो हम उसके हिसाब से आगे की जांचें करा पाते हैं। तो डेफिनेटली दो यदि अबॉर्शन हो गए हैं तो आपको प्रेगनेंसी लगने से पहले डॉक्टर के पास जाना और जांचें कराना अति आवश्यक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी लगे पहले तो वो एक अभी समस्या है, और फिर उसके बाद अबॉर्शन, तो इमोशनल जो ब्रेकडाउन होता है
1: जी
2: इस कपल का, स्पेशली फीमेल का, वो बहुत ज्यादा होता है, तो वापस ये स्थिति नहीं आए उस चीज का ध्यान रखते हुए पहले ही इलाज जो है वो चालू करें, जांचें कराएं, कारण जानें और उसका इलाज प्रेगनेंसी लगने से पहले करें, जिससे वापस ये स्थिति ना आए
1: ना आए जी। डॉक्टर साहिबा, अब धीरे धीरे जो हमारा समय है वो अब समाप्ति की ओर है, कुछ ही मिनट बचे हैं लगभग।

0: 6-7 मिनट बचे हैं, तो आप क्या बताना चाहती हैं? एक कॉल आ गया है. हेलो हेलो
1: हेलो.
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ. दीदी मनोज नामदेव.
0: जी मनोज जी, है कोई सवाल आपका?
1: बिल्कुल जी, सवाल है.
0: जी करिए.
1: जी दीदी, सवाल में आई है कि जैसे किसी महिला को जैसे दर्द नहीं होता और जैसे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, तो डॉक्टर साहिबा बोलती हैं कि इनका तो ऑपरेशन ही होगा, जब ही डिलीवरी होगी, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जैसे दर्द भी ना हो अगर, और अगर जैसे ऑपरेशन ना करना पड़े और डिलीवरी नॉर्मल हो जाए?
2: देखिए बिल्कुल है ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर बोलता है. असल में 9 महीने पूरे होने के बाद और ज़्यादा दिन निकलने के बाद कभी कभी बच्चे के चारों तरफ पानी की जो वो है मात्रा है वो कम हो जाती है, या कभी कभी बच्चा बड़ा साइज में बड़ा होता है तब ऑपरेशन करते हैं. अदरवाइज पेन्स लाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं. हम कुछ दवाइयाँ बच्चेदानी के अंदर भी रखते हैं, जेल, कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं जिससे दर्द बढ़े और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए. ठीक है मनोज जी,
1: बहुत बढ़िया दीदी, कहें कि समस्या का समाधान किया. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.
1: धन्यवाद
0: जी. डॉक्टर साहिबा, अब एक और सवाल जो मेरे जहन में आया कि क्या गर्भपात में, उसका जो गर्भपात एक, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं होती किसी महिला के लिए, किसी परिवार के लिए, तो क्या मानसिक तनाव भी एक कारण है?
2: जी, वो मेंटल स्ट्रेस की बात अपन ने करी कि इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस
0: जी,
2: ये कभी कभी यदि बहुत ज्यादा होता है
0: जी,
2: तो उसमें बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन वो बढ़ जाता है. और वो कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ने की वजह से जो प्रेगनेंसी सपोर्ट का हार्मोन है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बेलेंस होने से भी अर्ली अबॉर्शंस होते हैं. और इसीलिए जिन पेशेंट्स में अबॉर्शन होते हैं उनमें हम शुरू से ही सपोर्ट की मेडिसिन देते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के लिए टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस, जिससे ये वाली स्थिति वापस नहीं आए.
0: जी
2: तो डेफिनेटली मानसिक तनाव या इमोशनल जो वो है स्ट्रेस, वो बहुत कारण बनता है अर्ली अबॉर्शंस का.
0: जी एक एक और आप इसे मिथक कहेंगे या इसको असलियत कहेंगे कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो जैसे आप भी इस बात को समझती हैं कि आजकल की जो नारियां हैं वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है
2: जी,
0: तो उनको जैसे शुरू से ही ये लगता है कि हमें नीचे नहीं झुकना या हमें चलना नहीं है या सीढ़ियां नहीं चढ़नी है या, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
2: मैं हमेशा एक ही बात समझाती हूँ
0: जी
2: कि प्रेगनेंसी है फिजियोलॉजी, मतलब नॉर्मल चीज है,
0: बिल्कुल
2: ये कोई पैथोलॉजी या ये कोई डिजीज नहीं है
0: जी. जी
2: तो इसलिए जो आपका रूटीन वर्क है
0: जी,
2: वो आप करते रहें
0: जी.
2: डेफिनेटली स्ट्रेनियस वर्क, कोई बहुत ज्यादा जिसमें आपको स्ट्रेन आ रहा हो, जिसमें आपको परेशानी आ रही हो, वो ना करें. लेकिन प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजी है, इसलिए आप अपने जो रूटीन के काम आप करते आ रहे हैं वो करते रहें, उनको रोकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. इवन जो अबॉर्शंस है उसमें पहले बोलते थे कंप्लीट बेड रेस्ट, बट कोई कंप्लीट बेड रेस्ट का रोल नहीं है अब हम, क्योंकि मानते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट करने से हमें कोई ज्यादा फायदा होना नहीं है
0: जी.
2: क्योंकि जब भी कोई महिला कंप्लीट बेड रेस्ट करती है तो मानसिक तौर पे मुझे लगता है वो और ज्यादा परेशान होती
0: जी,
2: है
0: जी,
2: क्योंकि
0: जी,
2: पूरे समय उसका दिमाग चलता रहता है.
0: बिल्कुल सही कहा.
2: तो इसलिए कंप्लीट बेड रेस्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है. आप अपनी रूटीन एक्टिविटी इतनी लेवल तक कर सकते हैं कि आपको एग्जर्शन ना फील हो.
0: जी जी जी जी डॉक्टर साहिबा. डॉक्टर साहिबा एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर श्रोताओं से इजाजत लेने के लिए लौटेंगे आपके एक जरूरी संदेश के साथ.
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा डेंटल इंस्टीट्यूट, 5A10 रंगबाड़ी रोड, तलवंडी कोटा. कोटा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एवं लेजर सेंटर में आपको मिलती है अनुभवी एवं डेंटल इम्प्लांट और डेंटल लेजर विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी की विश्वसनीय सेवाएं. रूट केनाल, केपिंग, टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रभावी इलाज. डेंटल इम्प्लांट के बारे में एक बार अवश्य संपर्क करें डॉक्टर धर्मेंद्र माहेश्वरी, मोबाइल 9928085808.
0: डॉक्टर साहिबा, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपका एक संदेश.
2: इस विषय से संबंधित मैं ये बोलना चाहूंगी कि बार बार गर्भपात की समस्या के लिए बेहतर होगा कि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे उसका कारण पता लगे और निदान भी जो आवश्यक है वो हो सके
0: जी. बहुत बहुत शुक्रिया.

0: शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और आपने वाकई आज के विषय को जो जितना भी समय था उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से श्रोताओं के फोन कॉल्स के भी जवाब दिए। आज इस टॉपिक पर जो हमारा टॉपिक था, महिलाओं में बार बार गर्भपात की समस्या और डॉक्टर की सलाह, इस पर बहुत अच्छे से आपने हमारे श्रोताओं को समाधान बताए और ये आज की मुलाकात जो थी वो बहुत सफल रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
1: धन्यवाद
0: जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए संयोजन था रामनारायण मीणा का, तकनीकी सहयोग था निहाल सिंह और विनीत कुमार का। और अब इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से, लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से हमें इजाजत दीजिए। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: भारत सरकार की जो वाटरशेड स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के

0: ये 5 किलो वाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़

0: प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय EMS और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
1: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल EMS, EMI तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर।
2: मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और साथ ही FM 102.6 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का जो पहला गीत हमने आपके लिए चुना है वो हमने लिया है फिल्म छाया से, तलत महमूद और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजें। इस युगल गीत के लिए बोली थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया सलील चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली ये आवाज़ें अख्तर रोमानी के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। ये याद भी बड़ी गजब की चीज है। कभी जब ये आती है तो होठों पर एक अजीब सी मुस्कान ला देती है, कभी ठेठा के लगाकर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, और कभी कभी ये आंखों में आंसू भी ला देती है, और कभी ये याद

बात ऐसी होती है कि घंटों तक इंसान अकेले बैठकर उन यादों के साथ जी सकता है, तो कभी किसी के आने से भी यादें मुकम्मल हो जाती हैं, चाहे वो गली में निकला हुआ चांद ही क्यों ना हो।

زخم، ये फिल्म का नाम है दोस्तों। और अलका याग्निक की आवाज़ इस गीत में, आनंद बख्शी ने बोल लिखे और एमएम करीम ने संगीत दिया। फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.3 एक मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब कुछ ही पलों के बाद हमारी श्रोता सुनेंगे अगला कार्यक्रम। करते हैं चंद लम्हों का इंतजार।

श्रोताओं को हम कार्यक्रम संबंधी एक सूचना भी दे देते हैं। आप प्रातः 9:55 से 11:00 तक सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित होने वाला एक विशेष कार्यक्रम, जिसका सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे। अब हमारे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आज का घर आंगन कार्यक्रम।

खेलो चाहे जो भी खेल, रज्जो था आपस में मेल। सब प्रेम की भावना खेल छ जो सिखातो, इका ले ही खेल संधा का ताई भातो। तो बर्णियों या पंक्तियां का ला रही मुँह करू छू आज का कार्यक्रम घर आंगन की शुरुआत। और आज मुँह था का साथ छू था की बहन वर्षा, तो स्वीकार करो मारो घणो घणो राम राम। बर्णियों आपन जाना छा का जशा जीबा के लिए घनी चीजा की जरूरत हो वच, उही तरह खेल को भी अपना जीवन में घणो महत्व हो वच। मास आपनो मनोरंजन हो वच और शारीरिक विकास में भी घणो मददगार रे वच। तो बर्णियों आज अपन मना रहा छा अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, जो हर साल 11 जून यानी के आज ही का दिन मनायो जावच। यो दिन बच्चा का जीवन में खेल के ताई पहचानबो और वाक खेलबा का अधिकार दिलावा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनायो जावच। इको उद्देश्य बच्चा का समग्र विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेला के ताई बढ़ावो देबो छ। खेल से बच्चा में नेतृत्व टीम भावना और जीवन की चुनौतियों को सामना करबा को कौशल विकसित होवे छ बणियो। क्योंकि बणियो आपन देखा जा के आजकल बच्चा पैदा होता ही मोबाइल और टीवी में ज्यादा समय बिताओ छ और खेल में भी फोन में ही देखे छ। इस वा को शारीरिक विकास भी ढंग से न हो पावे छ। अब बच्चा घर में ही खेल वो ज्यादा पसंद करे छ, जैसा का इंडोर गेम वीडियो गेम खेल लिया और बणियो जैसा का कैरम, अब बाहर जा को आनंद भी बणियो जावे छ। बणियो पहली बार अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 का दिन ही वैश्विक स्तर पर मनाई गयो छ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: चाहते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बण्यो वापस आपण आपनी बाता चिता पर आ जाऊ मचा। बण्यो आज एक जानकारी ले रहा जा था कले जो च कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कशा हो वच। या जानकारी च श्रीमती इंदिरा जी यादव की, तो सुन लिया जा या जानकारी।
4: बण्यो घर आंगन कार्यक्रम में सभी बण्यो को स्वागत च। आज बण्यो अपना साथ च श्रीमती इंदिरा यादव, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में कार्यरत उद्यान विशेषज्ञ का रूप में। बने आज अपन चर्चा करेंगे यहाँ सु कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन सु यहाँ को का तात्पर्य च, या अपने बने के ताई समझाओगा कि कृषि उत्पादों को मूल्य संवर्धन अपने बने कशा कर।
5: कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन जो है, कृषि उत्पाद मतलब अनाज है, दालें हैं, फल सब्जियां हैं, दूध है। तो अनाज की अगर हम बात करें तो गेहूं और चावल है, तो उसकी मिलिंग करके उसका आटा, और अगर मिक्स, अगर जैसे हमारा कोई मोटा अनाज है तो मोटे अनाज का आटा, उसकी कुकीज बनाई जा सकती है, केक वगैरह जो आजकल ये हो रहा है, मोटे अनाज पे भी सरकार ज्यादा ये कर रही है। इसके अलावा दूसरा नंबर है, अगर हम दालों का मूल्य संवर्धन करें तो दालों की मिलिंग करके, उसकी पैकेजिंग करके उसको हम सेल कर सकते हैं अच्छे दामों पे। अगर हम बात करें जैसे दालों में उड़द है, तो उड़द किसान 50 रुपए किलो बेचता है, वही अगर मूल्य संवर्धन कर दे उसको दाल के रूप में, तो वही दाल वो 120 से 150 रुपए किलो में बेचता है, ठीक है। और अगला है हमारा फल सब्जियां जैसे है, तो फल सब्जियों में अगर आम है, आंवला है, तो आम वगैरह का कोई अचार चटनी वगैरह इस तरीके से बन सकता है, जैम वगैरह, मिक्स जैम वगैरह। उसी तरीके से आंवले की बात करें तो आंवले से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, आंवला का अचार है, चटनी है, पाउडर है, मुरब्बा है, कैंडी है। उसी तरीके से च्यवनप्राश का भी एक अवयव मेन आंवला ही है। तो इसके अलावा अगर फलों की और बात करें तो हम करौंदा का अचार हुआ, उसी तरीके से अपन बात करें गोंदा जो है उसका अचार हुआ, सहजन का हुआ, मिर्ची का हुआ, हल्दी का हुआ, इस तरीके से इनके अचार हुए, इनसे चटनी हुई, इनका कोई ड्राई प्रोडक्ट हुआ। वही टमाटर अगर हम केचप के रूप में अगर बनाए, तो उसी टमाटर से जैसे लगभग कुछ सॉस वगैरह भी बनाए, तो कुछ नहीं तो आधा किलो तक भी अगर वो बन जाए, तो वही आधा किलो हमारा लगभग 70 से 80 रुपए किलो जाएगा। तो वो ये है कि अलग अलग, जैसे अगर हम गेहूं और चावल है तो वो 2 से 3 गुना, उसी तरीके से अगर हमारे मसाले हैं तो मसाले कुछ 4 से 5 गुना, और वही हम बात कर रहे हैं अपने फल सब्जियों की, तो वो लगभग 10 गुना तक कई बार उनका मूल्य संवर्धन करके उसकी आय हो सकती है, आय बढ़ा सकते हैं। मसालों की अगर बात करें तो मसालों में मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, अपना धनिया हो गया, सौंफ हो गया, उनका हम साबुत रूप में भी मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, भाई साबुत भी उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा उसका जैसे पाउडर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं।
4: हाँ, तो खावा को मतलब यो चाहे कि जो भी आपन सब्जी करा चाहे या कोई फल उग रहा चाहे आपने, तो आपको मूल्य संवर्धन करवा कारण आपन वहां तय तैयार भी कर सका चाहे, जैसे मसाला तैयार कर बेचेगा तो दुगुनी मूल्य अपने मिल सका चे। तो बहन भाई या बात तो थोड़ी समझ में आई रही चे, डॉक्टर साहब ये इंदिरा यादव जी कितनी बढ़िया जानकारी आपने दे रहा चे।
5: दूध का भी हो सकता है, जैसे हम खाद्य की बात करें तो दूध भी उसका एक पार्ट है खाने का। तो दूध का हम दूध से हम दही, छाछ, लस्सी, घी और पनीर वगैरह बना के बेच सकते हैं। अब प्रेजेंटली मैं बात करूं अपने हाड़ौती की, तो घी में हम कहीं देखते हैं फैक्ट्रियों में मिलावट का घी मिल रहा है, गांव वगैरह में हम ढूंढते हैं तो अब एक प्योर घी जो है हमें बहुत कम मिलता है। अगर हम बात करें 10 किलो अगर किसान दूध बेच रहा है, तो 10 किलो दूध 300 रुपए मिलेंगे, 30 रुपए लीटर से ज्यादा गांव में नहीं बिकता है दूध, मैक्स हो गया तो 40 रुपए लीटर, इससे ज्यादा किसान का नहीं जाता। लेकिन वही अगर वो उसका मूल्य संवर्धन जैसे घी बनाकर भी अगर बेचता है, तो गाय का जो घी है वो गांव में भी आज की तारीख में 1500 रुपए किलो मिल रहा है। वही अगर भैंस की बात करें तो 1000 रुपए

0: किलो हमें घी मिल रहा है, तो घी में भी आप देखो कि लगभग 5 गुना ज्यादा उसका रेट हमें मिलती है अगर हम मूल्य संवर्धन करें तो। ये है मूल्य संवर्धन से कि भाई जो 1 रुपए की चीज हमें 5 रुपए उसका भाव मिलता है मूल्य संवर्धन से।
1: कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी कान काई फायदो मिल सका जगह अपना किसान भाई बहनिया का ताई, जैसे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कोई मेला लगता हो या यहाँ ताई फायदो देता हो, जैसे सरकार यहाँ बताती हो कि अच्छा खेती बाड़ी करो तो ताई अच्छा फायदो हो।
0: कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है आर्या परियोजना, उसमें मूल्य संवर्धन पे हम लोग जैसे हमारी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको अचार बनाना या पापड़ बनाना, जैसे पोटैटो, जैसे यहाँ पे आलू का भी उत्पादन बहुत ज्यादा तो उसके वेफर्स बनाना, चिप्स बनाना, मसाले हैं तो मसाले जैसे हल्दी है, मिर्ची है तो उसकी प्रोसेसिंग करके उससे ये करना, दालों की मिलिंग वगैरह किस तरीके।
2: बढ़िया, अब बार आप लोग घर आंगन कार्यक्रम अपनी यही रोकूंगा क्योंकि एक विशेष कार्यक्रम रिलव हो जा रही है, तो दोबारा सुनवाऊंगा अगर टेम मिले तो। राम राम। बर्ण
3: ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और आप जैसा जानते हैं कि रेडियो के प्रसारण की गुणवत्ता एफएम ट्रांसमीटर से कितनी अच्छी सुनाई देती है, और यही है कि एक नया सोपान हम चढ़ने जा रहे हैं आकाशवाणी के इतिहास में। 90 सुनाई देती है और यही है कि एक नया सोपान हम चढ़ने जा रहे हैं आकाशवाणी के इतिहास में। 90 साल का हमारा लंबा इतिहास रहा है जिसमें हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं से अपना जुड़ाव किया है।
4: और जितेंद्र, मैं तो ये श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के साथ ही हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ये सफर सूचना का है, संस्कृति का है और आप सबसे जुड़ाव का है, तो यूं ही जुड़े रहिए इस विशेष प्रसारण में। और साथ ही जितेंद्र, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। रात भर जलता रहा हूं सुबह होने की आस में, रात भर जलता रहा हूं सुबह होने की आस में, टूट कर बिखरा नहीं हूं फिर से जुड़ने की प्यास में, मैं वो लम्हा नहीं जो गुजरा नहीं, मैं वो लम्हा नहीं हूं जो गुजरा नहीं हूं, मैं वो सपना हूं जो टूटा नहीं हूं।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलो वाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री अश्विनी वैष्णव माननीय सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा, और साथ ही इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति है प्रसून जोशी जी की, जो अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के। और ये जो ट्रांसमीटर है ये जैसलमेर जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके पास में स्थित है, तो इसकी वैसे ही महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
1: और जितेंद्र, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की खूबी, और ये खूबी है बिना खरखराहट के स्टीरियो साउंड में संगीत और बातें सीधे हमारे श्रोताओं के दिलों तक उतरेंगी।
0: बिल्कुल, और जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, जो दूर दराज के लोग हैं, जैसलमेर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव ढाणियां हैं, वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, रेडियो की बात पहुंच पाएगी, आकाशवाणी की बात पहुंच जाएगी।
1: हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रेडियो सिर्फ हमारा नहीं, आपका है। आपकी समस्याएं, आपकी कहानियां, आपके गीत, आपकी बातें और आपकी शिकायतें भी।
0: बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो ने जो हमारी सभ्यता है, कला है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाई है, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय और खुशी का दिन है कि ये नया एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज और दूर तक और ज्यादा स्पष्ट रूप से पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं श्री प्रसून जोशी, और वे बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। अगर उन्हीं के शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को अगर मैं श्रोताओं तक पहुंचाऊं तो कहना चाहूंगी कि पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, गिरकर उठना सीखा है, अब दौड़ लगानी है। ये नया हिंदुस्तान है, आंखों में अरमान है, हाथ में हुनर है, दिल में तूफान है, अब सपनों को हकीकत की जुबान देनी है, दुनिया को अपनी नई पहचान देनी है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप प्रतीक्षा कीजिए मंत्री जी का उद्बोधन आपके रेडियो सेट पर।
1: तो बस श्रोताओं को लिए चलते हैं।

शुरुआत थोड़ी सी जोश के साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। जयपुर की धरती तो शूरवीरों की धरती है, कला की भी धरती है। यहां तो जोश भी है, कला भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है। आकाशवाणी के जैसलमेर के ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन यहाँ जयपुर में हम सब मिलके कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज सौभाग्य है कि सब एक से बढ़कर एक हमारे गणमान्य व्यक्ति, समाज के लीडर्स जुड़े हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे जयपुर की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी बोलते हैं। वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली। ये हमारी जयपुर की दीदी, जयपुर के घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सब भी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसी हमारी दीदी, हमारे ऊर्जा के मंत्री, ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मजा आता है सुनने का, एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, मजा आता है।

आप पधारे, आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य कमजोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। आपको सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी श्री राजीव जैन जी, आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहाँ से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, वही छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मजा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मजा आ गया था। बाजरे के सोगरे को फर्स्ट क्लास चूर के, छोटू सिंह जी, राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मजा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं, और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है, तो उस सीरीज में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, अपने CEO साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में यहाँ पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में, आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो, उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है, और जैसलमेर जिले का करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुंचाएगा विश्व की, हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान को वर्षों वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक टाइम फ्रेम में, स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए जब UPA की सरकार थी, मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी UPA की सरकार के समय में रेलवे का खरे उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का भी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहाँ पर है, अमिताभ जी, अभी GM साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का, पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना। GM साहब 200 करीब, अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशन

लोगों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है, तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर का स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई, कैसा लगता है भाई पीछे कैसा लगता है? अच्छा है, अच्छा है तो पता नहीं चल रहा है। गांधीनगर का स्टेशन फोटो है, कैसा है? खातीपुरा कितने जनों ने देखा है? थोड़े दिन बाद में उसका खातीपुरा में जो साइडिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अपने इतना रेलवे का काम हाथ में लिया है कि आनंद आता है देख के कि मोदी जी ने देश का ये अपना जयपुर का स्टेशन। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि स्टेशन के काम में किस तरह की कठिनाई आ रही है, मैं उनको समझा रहा था विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी रेलगाड़ियां आएगी नहीं जाएगी नहीं वहां से, कई जगह तो 5-5, 6-6, 7-7 वर्षों तक, 7 साल तक ट्रैफिक बंद। इस तरह का भी देश दुनिया में कई उदाहरण है, अपने देश में तो ऐसा नहीं कर सकते, अपने तो एक दिन भी गाड़ियां अगर रुक जाए तो जैसा समझते हो मैं क्या बोलूं, समस्या बड़ी हो जाए। इसीलिए काम को बहुत सावधानी के साथ करते हुए, बड़े स्टेशन का टाइम फ्रेम है 4-6 साल का करीब करीब, और छोटे स्टेशन का टाइम फ्रेम है 2-3 साल का, सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए। और प्रदेश की जो कठिनाई, अभी मुझे भाई हमारे एमएलए साहब गोपाल जी भाई साहब बता रहे थे और दीदी मंजू जी बता रहे थे, स्टेशन के सामने लोगों की कुछ समस्या है, तो मैं जेडीए से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बहुत संवेदना के साथ करें। जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, किसके लिए डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो वो जो भी हम डेवलपमेंट करें संवेदना के साथ करें, और उसमें जल्दबाजी न करके सबको साथ लेके सबकी बात करके सबको समझ के उनके लिए क्या किया जा सकता है वो सब समझ के ही हर चीज को करें। तो आप दोनों इसमें लीडरशिप लीजिए, और माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी जेडीए को इसको बात में बता देंगे। वैसा ही गांधीनगर स्टेशन भी बहुत ही सुंदर बन रहा है, जयपुर गांधीनगर, ये जयपुर गांधीनगर का, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण नगरी है जयपुर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, ये जैसलमेर का स्वर्ण नगरी का स्टेशन कंप्लीट हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना सुंदर काम, जीएम साहब बहुत धन्यवाद, हमारे अमिताभ जी जीएम साहब, हमारे रेलवे के करीब 10,000 अधिकारी हैं, उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट अधिकारी हैं, एक बार जरा आप सब इनका अभिवादन करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स है रेलवे के, 4-5 जो बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनको मैं मानता हूँ उनमें से आप है। इसी महीने इनका कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट होता है, लेकिन अपने 2-2.5 वर्षों के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जोधपुर का स्टेशन, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, और बहुत ही अगले 50 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजाइन जो भी करो अगले 50 वर्षों की, ये अलवर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, सेकेंड एंट्री तो बन ही गया है, बीकानेर भुजिया की नगरी बीकानेर,

अजमेर। बहुत सारे स्टेशन हैं छोटे बड़े, कभी आप देखना सोशल मीडिया पे काफी। ये आबू रोड, मतलब पूरे प्रदेश में आज 85 स्टेशंस का काम, 85 स्टेशनों पे काम चल रहा है। करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेशनों में, जिससे कि एक प्रदेश के लिए एक नई नींव बने, एक बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा। 15 स्टेशन पे काम पूरा हो गया है, करीब करीब 23 स्टेशन पे हो गया है, और लेकिन एग्जैक्ट हमारे सिस्टम में जब तक काम एकदम 100% पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं बोलते। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इनॉग्रेशन के टाइम में गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद। फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर, महवा रोड, सोमेसर। सोमेसर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी है, चाय पीते थे स्टेशन के बाहर, गांव से आते थे जब गाड़ी पकड़ने के लिए। और करीब 80% काम कंप्लीट हो गया है 45 स्टेशनों में, बहुत सारे स्टेशन है और काफी करीब करीब अच्छी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको हमने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की ब्रांडिंग दी है, 10 हो गए राजस्थान में कंप्लीट। मारवाड़, मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनवंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सरातना, हिरनौदा, केरला, ये 10 कंप्लीट हो गए। 6 पे काम चल रहा है, जोगी मगना, लानेला, धानक्या तो पंडित दीनदयाल जी की भूमि है, तो वहां भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से। कोटा में, नवलगढ़ में, बीरदवाल में, और उसके बाद में 8 और अप्रूवल दिए हैं। तो एक तरीके से राजस्थान को रेलवे का पूरा बेनिफिट मिले और राजस्थान की इंडस्ट्री हो, जन साधारण हो, उन सब के लिए बहुत सारे काम, कई सारे काम हाथ में लिए। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा का गेज कन्वर्जन वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली ये लाइन है, जो सदियों से बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी। ये लंबे टाइम से गेज कन्वर्जन नहीं हो रहा था, मीटर गेज थी और एक तरीके से डिफंक्ट सी पड़ी थी, इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। नीमच से बड़ी सादड़ी की नई लाइन, पुष्कर एक बहुत ही हमारे श्रद्धा का बड़ा केंद्र, उसको मेड़ता से जोड़ने की लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल मध्य प्रदेश को जोड़ने की लाइन, रेवाड़ी से खटवास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, खटवास है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भिलड़ी, गुजरात जाने के लिए खासकर जो पोर्ट एरिया है वहां जाने के लिए, मुंद्रा, कांडला, इन सब पोर्ट्स के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा से धौलपुर से झांसी की थर्ड लाइन, फिर धौलपुर सर मथुरा से गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में से कोटा की नई लाइन, तरंगा हिल अंबाजी श्रद्धा का इतना बड़ा केंद्र, तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड की नई लाइन, और करीब करीब 46 नई गाड़ियां कोविड के बाद से राजस्थान के लिए चालू हुई है, जिसमें जयपुर की वंदे भारत, अजमेर की वंदे भारत, जोधपुर की वंदे भारत, जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी, कई गाड़ियां, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, अजमेर से दरभंगा की गाड़ी, जो कि हमारे जयपुर की दीदी मंजू जी ने बहुत ही उसकी डिमांड की थी, अब दीदी की आज डिमांड है कि उसको रेगुलर करना चाहिए। क्या दीदी, दरभंगा वाली गाड़ी को रेगुलर करना चाहिए, कर दे? दीदी कह रही है घेवर खिलाएंगे अगर आप पूरा कर दोगे तो, घेवर नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी। खिलाएंगे दीदी घेवर, पक्का मंगवा लिए? चलिए इस गाड़ी को भी रेगुलर कर देंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में आकर दरभंगा से अजमेर जयपुर की जो गाड़ी है उसको आने वाले कितने दिन में कर पाएंगे जीएम साहब, 15-20

दिन में कर पाएंगे, पता करके बताएंगे आप। चलिए 15-20 दिन के अंदर प्रयास करें क्या शिवाजी, 15 दिन में कर सकते हैं? कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। एक महीने में? चलिए सभी एक महीने का टाइम ले रहे हैं तो 2 महीने का टाइम देता हूं मैं, 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को रेगुलर कर देंगे दरभंगा के लिए, जो दीदी की डिमांड है, ये आपकी डिमांड है, इसको रेगुलर कर लेंगे। साथ ही साथ 2 और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जयपुर में, एक तो अच्छा AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। AI डेटा सेंटर भविष्य का ऑयल है ये समझो, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी AI पे बहुत बड़ी आधारित होगी। तो जयपुर में एक AI डेटा सेंटर का काम चालू कर रहे हैं, काम को फेजेस में करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, नागर जी से मैं बात कर रहा था कैसे उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके, और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे जयपुर के लिए, जो हमें बार बार गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है उसकी जरूरत ना पड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर जयपुर में करेंगे। और यहाँ के नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए MNIT में क्वांटम और AI और सेमीकंडक्टर की 3 नई फैसिलिटी का आज ही उद्घाटन करेंगे MNIT जयपुर में। एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का बहुत ही मेहनत का काम है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे नए काम राजस्थान में हो रहे हैं, उसी कड़ी में कुछ और नई चीजें जुड़ेंगी। आज इस कार्यक्रम में आप सब आए, आकाशवाणी की कई यादें ताजा की। मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से, और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से, कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। समय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन 2 सूत्रों में बांधे, डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब ये हुआ, जैसे राजस्थान का उदाहरण दे, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में अलग तरह से बोली है, पूर्वी राजस्थान में अलग बोली है, उत्तर में जाओ तो अलग भाषा का एक प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण में जाओ तो भाषा का अलग प्रभाव दिखाई देता है, आदिवासी क्षेत्रों में एक अलग वाइब्रेंट कल्चर है, शहरी क्षेत्रों का अलग, एक अलग उसकी ताकत है, उसकी अलग ऊर्जा है। क्या हम आकाशवाणी का उपयोग करके, क्या हम दूरदर्शन का उपयोग करके हाइपर लोकल, उस क्षेत्र के कलाकारों को, उस क्षेत्र के नए क्रिएटर्स को, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहां के क्रिएटर्स को, वहां पे काम किसी भी तरह का, कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहा है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुंचने की, कोई बहुत सुंदर तरीके से कारीगरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा वीणा का शिष्य है पंडित जी का, उसको एक मौका मिले, कोई सारंगी हो, कोई बांसुरी हो, कोई किसी भी तरीके से किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, किसी भी गायन के माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ता है उसको जोड़े, उसको अपॉर्चुनिटी दे। हाइपर लोकल, हाइपर लोकल, वो आप एक परिवर्तन अगले 3 वर्षों का टारगेट ले, 1000 दिन का टारगेट ले, और 1000 दिनों में हाइपर लोकल, डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान, जयपुर आए तो घेवर की बात करें, दाल बाटी चूरमा की बात करें, बाजरे का चूरमा की बात करें, सोगरे की बात करें, ग्वारफली की सब्जी की बात करें, ये चीजें समझाएं, राजस्थान के गट्टे की सब्जी की बात करें, कई जो चीजें हैं अपनी संस्कृति की और देश भर में,

0: उड़ीसा जाओ उड़ीसा की, बंगाल जाओ बंगाल की, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जो जमीन से जुड़े हुए आकाशवाणी के सभी कर्मचारी और सभी साथी हैं, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप, इस भावना के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आभार, बहुत बहुत आभार हम सभी के समक्ष अपने उद्बोधन से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 20 किलोवाट ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में जो उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन।
3: और बहुत ही सुखद अवसर है ये जितेंद्र, हम सब के लिए, कि राजस्थान में ये 39वां FM ट्रांसमीटर स्थापित हुआ।
2: जी हाँ। और श्रोताओं, ये मंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत।
3: और
2: दीजिए इजाजत
3: इस प्रसारण से, हमें इजाजत दीजिए। मैं राजकुमारी कर्णानी और
2: मैं जितेंद्र वर्मा,
3: और अब आगे का सफर आप तय करेंगे हमारी साथी रौनक के साथ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड पाइए सीमलेस बैंकिंग के साथ और भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और एक्टिवेट करें SBI प्रीमियर बैंकिंग टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर का शेष भाग
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं आइए श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन का शेष भाग

0: के रूप में अगर बनाएं तो उसी टमाटर से जैसे लगभग कुछ सॉस वगैरह भी बनाएं तो कुछ नहीं तो आधा किलो तक भी अगर वो बन जाए तो वही आधा किलो हमारा लगभग 70 से 80 रुपए किलो जाएगा। तो वो ये है कि अलग अलग, जैसे अगर हम गेहूं और चावल है तो वो 2 से 3 गुना, उसी तरीके से अगर हमारे मसाले हैं तो मसाले कुछ 4 से 5 गुना, और वही हम बात कर रहे हैं अपने फल सब्जियों की तो वो लगभग 10 गुना तक कई बार उनका मूल्य संवर्धन करके उसकी आय हो सकती है,
1: बढ़ा सकते,
0: आय बढ़ा सकते हैं। मसालों की अगर बात करें तो मसालों में मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, अपना धनिया हो गया, सौंफ हो गया, उनका हम साबुत रूप में भी मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, भाई साबुत भी उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा उसका इसे पाउडर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं।
1: हाँ, तो खावा को मतलब ये हो जाए कि जो भी अपन सब्जी करा चाह या कोई फल उग रहा चाह अपना तो आप मूल्य संवर्धन करवा कारण अपन वहां ताई तैयार भी कर सका चाह, जैसे मसाला तैयार कर बेचेगा तो दुगुनी मूल्य अपने मिल सका चे। तो बहन भाई हूँ यह बात तो थोड़ी समझ में आई रही चे कि डॉक्टर साहब ये इंदिरा यादव जी कितनी बढ़िया जानकारी अपने दे रहा चे।
0: दूध का भी हो सकता है, जैसे हम खाद्य की बात करें तो दूध भी उसका एक पार्ट है खाने का। तो दूध का हम दूध से हम दही, छाछ, लस्सी, घी और पनीर वगैरह बना के बेच सकते हैं। अब प्रेजेंटली मैं बात करूं अपने हाड़ौती की तो घी में हम कहीं देखते हैं फैक्ट्रियों में मिलावट का घी मिल रहा है, गांव वगैरह में हम ढूंढते हैं तो अब एक प्योर घी जो है हमें बहुत कम मिलता है। अगर हम बात करें 10 किलो अगर किसान दूध बेच रहा है तो 10 किलो दूध 300 रुपए मिलेंगे, 30 रुपए लीटर से ज्यादा गांव में नहीं बिकता है दूध, मैक्स हो गया तो 40 रुपए लीटर, इससे ज्यादा किसान का नहीं जाता। लेकिन वही अगर वो उसका मूल्य संवर्धन जैसे घी बनाकर भी अगर बेचता है तो गाय का जो घी है वो गांव में भी आज की तारीख में 1500 रुपए किलो मिल रहा है। भाई अगर भैंस की बात करें तो 1000 रुपए किलो हमें घी मिल रहा है। तो घी में भी आप देखो कि लगभग 5 गुना ज्यादा उसका रेट हमें मिलती है अगर हम मूल्य संवर्धन करें तो। ये है मूल्य संवर्धन से कि भाई जो 1 रुपए की चीज हमें 5 रुपए उसका भाव मिलता है मूल्य संवर्धन से।
1: कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी कान काई फायदो मिल सकेगा अपना किसान भाई बहनिया का ताई, जैसे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कोई मेला लगता हो या यहाँ ताई फायदो देता हो, जैसे सरकार यहाँ बताती हो कि अस खेती बाड़ी करो तक ताई अस्या फायदो हुआ।
0: कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है आर्या परियोजना, उसमें मूल्य संवर्धन पे हम लोग जैसे हमारी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको अचार बनाना या पापड़ बनाना, जैसे पोटेटो जैसे यहाँ पे आलू का भी उत्पादन बहुत ज्यादा तो उसके वेफर्स बनाना, चिप्स बनाना, मसाले हैं तो मसाले जैसे हल्दी है, मिर्ची है तो उसकी प्रोसेसिंग करके उसे ये करना, दालों की मिलिंग वगैरह किस तरीके से उनको पैकेजिंग करके कैसे सेल करना। इसके अलावा हमने कुछ अपने स्वयं सहायता समूह भी बना रखे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ने। हमारा एक स्वयं सहायता समूह रामदेव स्वयं सहायता समूह हिंडोली में है जिसमें एक महिला है ज्योति नकलक, वो लगभग 15 महिलाएं मिलकर जो फल और सब्जियां हैं उसके अचार बना रही हैं, अचार बना के वो महिला 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमा रही है। और यही राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर भी वो अपने अचार वगैरह बेच रही है और वो 10 से 15 टन साल का निकाल देती है, अच्छा कर रही है, वो अच्छी कमाई कर रही है। इसके अलावा मसालों की बात करें तो जखाना में एक हमारा एपीओ है, वहां पर कुछ महिलाएं हैं जो मसालों के प्रसंस्करण पे काम कर रही है, दालों के प्रसंस्करण पे लुहारपुरा नेनवा ब्लॉक में एक हमारा एक स्वयं सहायता समूह है, विष्णु स्वयं सहायता समूह, वो काम कर रहा है।
1: गाँव की बहने आत्मी न समझे पर ये प्रसंस्करण की बात आई तो ये को मतलब हो कहीं से?
0: प्रसंस्करण का मतलब है जो जैसे दाल है तो जैसे उड़द हमने लिया किसान के यहाँ से तो उड़द को हम डायरेक्ट तो हम खा नहीं सकते, तो उसकी दाल बना के मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाइड करना कि वो खाने योग्य बन जाए, तो वो प्रसंस्करण करके हम जैसे आप मसाले तो साबुत के साबुत ऐसे तो आप मिर्ची खा नहीं जाएंगे, मिर्ची का पाउडर बनाएंगे, हल्दी का पाउडर बनाएंगे, तो उस तरीके से उसको खाने योग्य बनाना प्रसंस्करण कहलाता है।
1: अच्छा इंदिरा जी, या बताओ कृषि विज्ञान केंद्र में महिला कशा आती होगी, वह कशा जानकारी पहुंचाई जाओ तो आसपास की गांव की महिला यहाँ आओ?
0: हमारे यहाँ पर हम लोग कई तरह की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, हम डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं गांव में भी, हमारी कुछ ट्रेनिंग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे होती है, कुछ ट्रेनिंग्स हम लोग गांव में करते हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को इकट्ठा भी करते हैं, उनके स्वयं सहायता समूह भी हम लोगों ने बना रखे हैं, स्वयं सहायता समूह जो है 10 महिलाएं 15 महिलाएं मिलकर स्वयं सहायता समूह बना रखी है। स्वयं सहायता समूह में वो महिलाएं अपना अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कुछ दालों पे काम

0: कर रही है, कुछ मसालों पे कर रही है। एक ग्रुप ओकारपुरा में है जो महिला हल्दी की जो है, आजकल मिलावट का बहुत चल रहा है भाई, हल्दी और मिर्ची में सब लोग ये कहते हैं कि भाई कलर वाला आ रहा है मसाला, तो उसमें वो लोग कलर मतलब प्रोसेसिंग मतलब उसको पाउडर बनाकर नहीं बेच रहे, वो उस हल्दी की चिप्स बनाते हैं। तो
1: अच्छा
0: लगभग यूं 7 किलो हल्दी से 1 किलो चिप्स तैयार हो जाती है। और अगर किसान बाजार में बेच रहा है, जैसे इस साल जो मैंने हल्दी का भाव देखा वो 25 से 30 रुपए किलो था, वही लेकिन 7 किलो 25 7 125 लगभग 150 रुपए, उस 150 रुपए को वो लोग 600 रुपए किलो में बेच रहे हैं। मतलब अगर आप बात करें 7 किलो से 1 किलो, तो वो जो 1 किलो बना रहे हैं चिप्स उसको वो 600 रुपए किलो में बेच रहे हैं, और बकायदा वो यहाँ नहीं राजस्थान में नहीं बाहर भी बेच रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है उनका, क्योंकि उनका ऑर्गेनिक है। वो जो हल्दी पैदा कर रहे हैं वो किसानों से डायरेक्ट बाई बैक करते हैं, वो कुछ किसानों को बीज देते हैं कि भाई आप ऑर्गेनिक करो, तो वो किसान उनकी जैविक खेती करते हैं, फिर वो जैविक हल्दी उनसे खरीदते हैं, प्रोसेसिंग भी उनकी खुद की महिलाएं कर रही है, फिर उसकी चिप्स बनाकर वो लोग बेचते हैं। भाई आपको पाउडर का अगर कुछ लगता है, शंका होती है कि पाउडर में कोई कलर मिला हुआ है या कोई और भी उसमें मिलावट है, तो आप चिप्स ले लो डायरेक्ट, क्योंकि चिप्स में तो कोई मिलावट नहीं हो सकती। इस तरीके से
1: इंदिरा
0: कर
1: जी
0: रही
1: बता रहे हैं हल्दी का भी चिप्स बना चा, तो या तो बहुत बड़ी बात है, मन तो आज ही पहली बार सुनी चाहे। हल्दी को अचार तो अपन खाओ चा, हल्दी अपन सब्जी में डालर खाओ चा, पर यह अलग बात बताई थी ना कि हल्दी का चिप्स बना चा, तो एक बार जरूर ट्राई कर जियो। और कई कई नई चीजा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर सिखाई जाओ जो अपनी बने पता ही कोई ना।
0: देखो प्रसंस्करण में, जैसे ये तो प्रसंस्करण का हुआ, प्रसंस्करण के अलावा हमारे दूसरी ट्रेनिंग्स भी देते हैं हम लोग, नर्सरी मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, मुर्गी पालन पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है, बकरी पालन पे ट्रेनिंग चलती है, डेयरी फार्मिंग पे हमारे यहाँ होती है, इसके अलावा फसल उत्पादन जो है उस पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो कृषि से संबंधित जो प्रत्येक अवयव है सभी की ट्रेनिंग है। कृषि विज्ञान केंद्र मेनली ट्रेनिंग के लिए, आपको तकनीकी मार्गदर्शन के लिए है। इसके अलावा हमसे अगर जुड़ती है कोई महिलाएं या कोई किसान, तो हम उनको डायरेक्ट मार्केट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, आपस में लिंकेज भी करवाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, किसी से लोनिंग के लिए भी हेल्प करवाते हैं। जैसे कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह है तो नाबार्ड से भी कोई लोन ले सकती है, या बैंक वगैरह से भी हम कॉन्टेक्ट करवाते हैं उनको लोन वगैरह के लिए, इस तरीके से हमारे यहाँ होता है।
1: एक बात और पूछना चाहूंगी इंदिरा जी के, जो ये खेती बाड़ी कर रहा है तो नया नया जो बीज आओ चे वहाँ की जानकारी भी देता होगा।
0: हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र पर हर तरह का मतलब खेती से जुड़ी हुई हर चीजें, जैसे
1: अच्छा।
0: कुछ बागवानी भी हुआ उसमें, एग्रोनॉमी का भी हुआ उसमें, मुर्गी पालन बकरी पालन सारी चीजें उसमें हम लोग। इसके अलावा प्रसंस्करण, भाई आपने पैदा तो कर दिया धान, अब धान किसान का जाएगा ज्यादा से ज्यादा 20 से 23 रुपए किलो, लेकिन वही अगर हम जो खरीदते हैं बाजार में जो चावल वो हम खरीदते 60 रुपए किलो से तो स्टार्ट होता है बासमती का, वही बासमती जो किसान बेच रहा है वो 20 रुपए 22 रुपए किलो में बेच रहा है। तो उस तरीके की सारी जो ट्रेनिंग है वो कृषि विज्ञान केंद्र पे दी जाती है।
1: इंदिरा जी अब चलता चलता अपने बहने सु एक लाइन में तक काय कबो चाहूंगा और अपने बहने का ध्यान रखना चाहिए।
0: मैं सभी महिलाओं से, कृषक महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का खेती में बहुत योगदान है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती है खेती में, लेकिन उनकी अगर आय की बात करें तो महिलाओं की आय पुरुषों से बहुत कम है। लेकिन अगर यही महिलाएं, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण से महिलाएं जुड़ी होती है, तो यही इसको अगर व्यावसायिक तौर पर अगर करें तो महिलाओं की आय तो बढ़ेगी, इसके अलावा उनके जो सामाजिक उनका जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी एक महिला है ज्योति नकलक, जो हिंडोली में जो अचार वगैरह बना रही है, वो सालाना 4 से 5 लाख रुपए कमा रही है अगर, तो अभी दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि भाई हम भी अपनी इस तरीके से अपना कोई काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
1: इंदिरा जी इतनी बढ़िया जानकारी मगे बहने दी, उनको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: धन्यवाद।
2: बण्याऊ अबार आपन सुन रहा चा इंदिरा यादव की या जानकारी जीमा वान बतायो का खी तरह खाद्य पदार्थ के ताई आपन प्रसंस्करण कर दुगना चौगुना दाम पर बेच सका चा, और घनी नई नई चीजा के बारा में भी वाना आपन कताई बतायो जो आपनी बण्या जान भी कोई न ची, जिसा का हल्दी का चिप्स या वाकई में नई चीज बण्याऊ इक बारा में तो मु भी अनभिज्ञ ची, और वास आपन ने आज घनी नई नई चीजा सीखी, और उम्मीद करा चा का आपन घर में भी प्रयास करेंगा, और अगर आपनी कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आपन भी प्रसंस्करण कर

दुगना चौगुना दाम कमा सका चा और अपना परिवार में मदद कर सका चा। बण्यो बातचीता चालती रहेगी पर सुनना चाहिए एक लोकगीत।

बण्यो अबार आपणने सुण्यो चुन्नी मारवाड़ी की आवाज में यो लोकगीत। अब आपण आपणी चर्चा वापस बोलाचा यानी कि वापस आपण आपणी बाताचीता कराचा। बण्यो आपण जाना छा क आज के टाइम पर खेल का मायना कतना घट रिया छे, यानी कि खेल तो खल्या जाओ छे पर घर में यानी कि जी आपण खांचा क इंडोर गेम। अब फलीक जशा आपण बाहर जार जशा गिल्ली डंडा

ये सब जिसा गेम हो बचा कबड्डी खो खो ये गेम न खेलना चाह और बण्यो ईमा फिर आपन अपनी बच्चिया की बण्या की बात करा क वो खेल का प्रति जागरूक हो तो यो तो घणो ही मुश्किल हो जाओ बण्यो क्योंकि आजकल आपन हर काम मोबाइल फोन पर करा चा और मोबाइल के प्रति लगाव भी ज्यादा हो रो चे फिर भलाई खेल ही क्यों नो खेल भी आपन मोबाइल में ही खेला चा या देखा चा पण बण्यो फली को टेम जो जब लड़को हो या लड़की संधा मिलकर एक साथ खेल चा जैसा का गिल्ली डंडा हो या लंगड़ी टांगोई सतुलिया कबड्डी खो खो ई तरह घना तरह का खेल खेला जाओ चा पण अब यो घणो कम आपनी देखबा में मल चा बण्यो जबकि आपन जाना चा का खेल आपन के लिए कतना जरूरी हो वचे ई ले आपन के ताई बच्चियां महिला का आत्मविश्वास के ताई बनानो चाहिए जे खेल में वाक ताई आपन जशा मां की दोस्त मां के ताई जोड़ा और महिला रोल मॉडल से मैं परिचित करावा आपन के ताई अपनी बच्चा के ताई जैसा जो प्रसिद्ध खचना का जो खिलाड़ी हो जो महिलाएं वहां के बारे में बतानी चाहिए जो ताकि जो अपनी जो बच्चिया च वो वहां से प्रेरणा ला और वो खुद भी स्वयं आगे बढ़ जैसा का बनिया पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी च बनिया जीना ओलंपिक में 2 बार रजत और कांस्य पदक जीत का इतिहास रचो चो वहीं आपन बात करा मेरी कोम की यान भी मुक्केबाजी की चैंपियन चा 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन यान जीती अशाई स्मृति मंधाना ये भी भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की स्टार बल्लेबाज और दुनिया की बेहतरीन महिला क्रिकेटर में से एक थी वहीं मनु भाकर युवा और बेहद लोकप्रिय निशानेबाज सानिया मिर्जा भारत की सबसे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी में से एक ची बण्याओ तो अशी घणी महिला खिलाड़ी जो बण्याओ आपने भारत में जिन्हें इतिहास रचे च और आपन अपनी बच्चिया के ताई यहाँ के बारे में बताऊंगा तो वही प्रेरणा में लगी और वो भी स्वयं आगे बढ़ेगी अर बण्याओ आपन अपनी बच्चिया के ताई सुरक्षित वातावरण देवा खेल के मैदान में वहां से समान व्यवहार हो व कोई निष्पक्ष माहौल वहां के ताई मल बण्याओ और इम परिवार जन मां की मदद कर हर छोटा बड़ा कदम पर मां की सराहना कर मेडल लारी छ बेटियां लड़का से ज्यादा खेल में अपनो हुनर के ताई आज मारी छ बेटियां तो बण्याओ अपनी या न सोचनी चाहिए क आपन बेटियां काई न कर सक पहल तो अपना परिवार जना ही करनी पड़ेगी और आपन कताई हर वा कोशिश करनी चाहिए क आपनी बच्चियां छोटी हो न तभी आपन वाई खेला के प्रति जागरूक करा जैसा बाहर जावो अबार तो बण्या गर्मी की छुट्टियां चल रही छ तो आपन जैसा वाई अपने घर से बाहर ले गया और वाई जैसा अपना फली का खेल हो बचा न गिल्ली डंडी सतुलिया कबड्डी खो खो यहाँ सब परिचित करावा आपन हो सक जरूरत पड़ तो स्वयं भी वहां के साथ खेला अगर अपनी बच्चिया छोटी छे तो इसे वो सीखेगी और खेल के प्रति आगे बढ़ेगी और बण्यो आजकल तो अपन स्कूल में भी देखा चा कि जो छोटा छोटा बच्चा हो वचे न वो प्रतियोगिता में जो खेल की हो वचे उमे भाग ले वचे और वहां का लारा वहां का जो माता पिता हो वचे वो भी भाग ले वचे प्रतिभागी बनच तो इस बच्चा को जो आत्मविश्वास रह वचे और बढ़च और वो आगे जाकर बहुत कुछ हासिल कर च बण्यो खेल केवल लाभकारी कोई न बल्कि हर बच्चा बच्चिया को मौलिक अधिकार भी छ यो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाओ च बण्यो खेल के जरियो बच्चों सीख च सोच च और नई नई चीजा से जुड़ च बण्यो बण्यो अपनी बातचीत हाल अपन जारी रखेगा फिर एक लोकगीत को आनंद लेला जा।

बण्यो अबार आपणने सुण्यो लता देवी की आवाज में यो लोकगीत बण्यो आपण जाना छा के आपणे ले यो कतनो जरूरी छे और आपणे ले न बण्यो संध्या कले चाहे महिलाओं पुरुषों बच्चाओं सभी कले योग घणो जरूरी हो छे बण्यो पण आपण या भी देखा छा के एक बार पुरुष और बच्चा भले योग मत टाइम दे द या यूं खदा अपन का वो योग कर सकच पर आपनी जो बर्निया छे ना वो भापड़ी योग न कर पाओ छे कुछ तो जिम्मेदारियां का चलते और कुछ काम का बोझ के चलते पण बर्नियो असाम आपनी जो बर्निया हो वच वो कई बार मतलब आपन यूं खस सकाचा का बीमारी की कगार पर भी आ जाऊ छे तो बर्नियो आपनी ऐसा न करनो आपनी भी टेम खाड़ कर आपन जाना छा के आपन ले परिवार भी जरूरी छे जिम्मेदारी भी जरूरी छे और घर में बाल बच्चा भी जरूरी छे और ये संदा काम एक महिला ही करे छे ई ले तो आपन

एक महिला रीढ़ की हड्डी को नहीं माना चा का अगर या छ तो आपनो घर खुश छ खुशहाल छ और घर में खुशी बनी हुई छ पण बण्यो आपन ही तो आपनो ध्यान रखनो ही छ न। और अगर अपना परिवार में जैसा अपना परिवार में और भी जो लोग छ वो भी इका महत्व समझ और वो भी अपनी जो महिला छ उका प्रति दायित्व समझ और जैसा को उका काम में या तो मदद कर द ताकि वह थोड़ी घनो टेम खार कर योग कर सक और अपनो शरीर अच्छा से बना सक क्योंकि अपन जाना चा का योग से शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास हो वच मन की शांति भी मिल ज। तो बणियो मु तो यही खबर चाहू छू का आपनो काम जरूरी छ आपनी करनो ही छ लेकिन जशा आपनी तड़कर टाइम न मिलियो छ तो आपन शाम का टाइम टाइम खाला और शाम की न मल्ला थोड़ी घनी देर दन में ही ऐसा योग हो जो आपन दन में भी कर सका चा रात में कर सका चा पण बण्यो टेम आपनी खानी पड़ोगो खर्च का पहल तो आपनी करनी पड़ेगी कोई भी काम च तो उमा सामंजस्य से आपनी बिठानी पड़ोगो बण्यो इस आपनो शरीर भी अच्छो बने रहो। और जब आपन योग करेंगा तो अपना जो घर का बाल बच्चा च वो भी का प्रति जागरूक होगा क्योंकि आपन जाना चा का एक माँ और या घर की एक महिला हो वच उसे ही जो घर का जो बाल बच्चा हो वच छोटा वो सीख पावच और माँ ही एक भली शिक्षक हो वच बण्यो। तो बण्यो आज से आपन ठानला का आपनी योग करनो च भलाई आपन 10 मिनट करा 20 मिनट करा क्योंकि अगर आपन करता करता आपनो शरीर भी बढ़िया हो जाओगो और एक आपनी आदत पड़ जाओगी। और बण्यो अब 21 जून योग दिवस भी आबा वालो च तो आपन उख पल ही ठानला का आपनी योग करनो च अच्छो शरीर बनानो च और मन में अच्छी शांति लानी च बण्यो। बण्यो अपनी चर्चा फिर जारी रखेंगे लेकिन फिर एक लोकगीत को आनंद लेना चाहिए।

बण्यो अबार अपन देखने चा को यो कशो टेम चाल रही छे। घनी गर्मी भी हो रही छे और उमस भी हो रही छे, क्योंकि बीच बीच में या बरखा आ जाओ छे ना बण्यो, इसे या उमस ही कर छे। और अशाम आपनो जो शरीर हो छे वो भी तिलमिला जाओ छे, क्योंकि आपनो पसीनो घणो आवे छे। और जब पसीनो आवे छे तो खचा ना अपन का आपनो आदो पानी तो उम ही निकल जाओ छे। मारा खबा को बण्यो यो ही मतलब छे के ई टाइम पर या ई मौसम में आपणी ज्यादा से ज्यादा पानी पीनो छे बण्यो, या ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ लेना छे, क्योंकि वही अपना शरीर में पानी की जो मात्रा छे कमी छे वो पूर्ति कर सके छे। आपन ध्यान रखा, जिससे अपन बाहर भी जा रहे छा तो पानी की बोतल तो अपना थैला में पटकी लेवा बण्यो। विशेष कर ध्यान रखा, या अपने घर में छोटा बाल बच्चा भी जरूरी काम से बाहर जा रहा छे तो वहां का भी अपन पानी की बोतल रख देवा। जा रहा छा कहीं बाहर धूप में वशा तो जरूरी हो तो ही अपन घर से बाहर निकला, और जावा तो अपन मुंह पर भी बढ़िया कपड़ो बांध निकला ताकि अपने गर्म हवा न लाग सक। अर बण्यो एक विशेष बात, जैसा आपन एसी में ही घर न बैठा चा और एकदम से आपना काम आ गयो और आपन घर से बाहर खड़ गया तो एकदम न खड़ा बण्यो, सामान्य तापमान हो बाक बाद ही आपन खड़ा, क्योंकि इस काई हो च आपन जैसा एकदम खर्च न ठंड से, यानी कि अंदर तो मौसम थोड़ो सा एसी में ठंडो रह च फिर एकदम गर्मी में खड़ जावा चा तो बण्यो आपने जो खर्च शरीर में जो खर्च न तापमान वो अंतर आ जाओ छे। और आपने खांसी जुकाम गड़ो खराब हो अशी जो ये चीजा छे ये घणी हो जाओ छे बण्यो, विशेषकर आपना बच्चा जो पसीना में पानी पी ल छे। अब माना आपन रोका भी कशा पर आपन ध्यान रखा के आपना बच्चा आया छे तो फली जैसा वो खेल कूद के आवे या बाहर से आवे तो वहां को पसीनो सुखावा फिर वहीं पानी पी बादा बण्यो। और अपनी तो विशेष ध्यान रखनो ही छे बण्यो, क्योंकि आपन तो खचा न जब आपन ही न समझेगा तो फिर अपना घर का बाल बच्चा कशा समझेगा। और इस तरह की ये छोटी छोटी चीजा आपन कते ध्यान रखनी छे बण्यो। तो बण्यो आज तो बस अपना जो यो घर आंगन प्रोग्राम छे उमई अतनोई, फिर नई जानकारी और नए विषय के साथ था के साथ जुड़ेगा। तब तक था कि बना वर्षाई दो ही जाजे। राम राम।

घर आंगन कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता और हमारी श्रोता बहनें सुन रही थी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद हमारे श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: पर मुझ पर खफा ना हो, कहीं तेरी भी कुछ खता ना हो, जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना।
1: मोहम्मद रफी और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, एंड दत्ता का संगीत था।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी, देव कोहली के बोल थे, आनंदराज आनंद का संगीत था। ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं।

0: लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जो शहीद।

0: तर्ज आवाज और गीत रचना है सुखविंदर सिंह की। नशा ही नशा है इस एल्बम का गीत आप सुन रहे हैं।
1: मोहब्बत मोहब्बत

तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में समीर के बोल, संजीव दर्शन का संगीत था। और यही है श्रोताओं आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। अब हमारे श्रोता सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी

0: दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या कका

0: पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियाँ लेकर वापस जाए।
1: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
0: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
1: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
0: राम कृपाल
1: जी,
0: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
1: जी।
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ आप बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब

0: शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी।
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है? हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी।
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ।
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्य

0: मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,
4: घर के पास लगा था मेला,
3: उसमें आया चाट का

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेली नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में सजी फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी मुलाकात स्टूडियो के जरिए होगी डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती से। आज का विषय रहेगा खरीफ फसलों के लिए जैव उर्वरकों की उपयोगिता। तो जो हमारे श्रोता डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती से इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमें टेलीफोन करें 2941142, या फिर आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 2333444 पर। STD कोड लगाना है 0744। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते।

मर्यादा फिल्म का दोगाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल ध्यानवी की बोल।

बस गुजरना चाहे घड़ियां, टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियां।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: सुरीला सफर इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को

0: कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
1: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाए, जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें।
0: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे, वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ BL मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म, नंबर प्लेट, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के 6 दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

शुदा गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है, अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद्व को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है, क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं, तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर

सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं की, गाँव में जो यादें हैं, रहत का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं

और रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना, जो जीना तमान पर फिल्माया गया। और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार

शुक्रिया प्यारे लाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती है कि गांव की अनमोल यादें ताजा हो रही हैं। इस इबारत में गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सूंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव। जी हाँ, और गीत भी बताए। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो

प्रिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें। श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हम इबारत पढ़ लिए है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वहीं शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं। और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली इस सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है।

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है, वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बराहत फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पंघट में। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: दी जाती है बाबू।
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवी का लिख दो ना।
2: बिरहा में कैसे

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, मैं कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं और कलाकार।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

0: करके पाया खोली।
1: किसने?
0: मैंने।
1: नहीं तो?

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी जो शहीद।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास।

0: बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है

0: कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान के खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमरीका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन

0: परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं आपने कौन

0: कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
1: जी बिल्कुल।
0: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
1: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
0: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी, और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
1: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
1: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
0: जी,
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
0: जी?
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे
1: जी। हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है,
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है कौशल है वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था।
1: बिल्कुल, और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं।
0: हाँ,
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसे आपने बोला
0: वो बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में। आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की, खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए।

0: कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है,
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है, और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है खेल को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना, कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी
1: खेलते थे
0: और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मार कर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: बिल्कुल। जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: है। और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह में साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते हैं।
1: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए।

0: हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए. जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है.
1: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है.
0: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी.
1: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है.
0: बिल्कुल.
1: तो चल रही गाना सुने.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने

0: लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती, आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले,
0: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
1: वो लाइक कितने बढ़ गए,
0: वो उसी में लगे रहते हैं,
1: और बस इसी से हम है ना। तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती, ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं, क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं, जो खुशी होती है ना वो होती है छोटे छोटे पलों में, हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती, ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
0: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए, भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं, दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं, कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था, लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना। जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े

0: आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है,
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी है। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में, उसका दिखावा करने के बारे में, एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है. खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने. और इसी साथ एक और हमारी श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है. तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे. और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है.
1: बहुत जरूरी
0: और है. इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है. इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही तो बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक.
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं.
1: हाँ, हेयर पिन चाबी ले लेता कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो. तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है. और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए. और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है. उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा.
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं. इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है. कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं. तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें. जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें.
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए. वो सब चीजें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है. इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए. और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं. तो अब

0: बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
1: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना
0: है। और सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड।

0: ललित शाह प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से, जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की, जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया। आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो उभार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था, और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी, जी।

0: कैपसेक के अंडर आती थी तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था। तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की जानकारी थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?

0: उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप उस अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
0: जी
1: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
0: बिल्कुल।
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम सीसीटीवीज को यूज कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहां पे खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप सीटीसी में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था।
1: जी जी।
0: तो दिल को छूता है ये।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद

0: कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेनियर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की। अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
0: ये सब एसएसबी कर रही है।
1: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को टेलरिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
0: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
0: जी,
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीजों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया।

0: और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे। ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया। आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बताता हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूंगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी, हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई, और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की, उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत

0: थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फेक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
1: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
0: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
1: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
0: जी,
1: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
0: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे जाके।
1: बिल्कुल,
0: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग आप।
1: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
0: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
1: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
0: जी।
1: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
0: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएसबी, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
1: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है, हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही है अपने ट्रेनिंग को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने?
1: बिल्कुल,
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी,
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
1: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आपको कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो?
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।

0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियां भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी।
0: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज के लिए, वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनकी सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूँ,
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी।
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और है सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूं, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं okay. आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज और एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज

0: सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल,
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है। अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: ऑलराइट जी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू एसएसबी के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको एएनओ नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें जेएनके हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, टीपीटी सेल एफएचक्यू से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही एसएसबी में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफकोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग, और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी,
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाए।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।

0: ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में. ठीक है, आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे.
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं. नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है.
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं. बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं.
1: बिल्कुल.
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है. रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट ममना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है.
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद.
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं. एक बहुत प्यारा सा मैसेज है बाबूलाल यादव का. आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं. मेरी तरफ से सर को सुनाओ, अच्छा लगेगा.
1: धन्यवाद.
0: ऑल राइट. 29th SID से एक और मैसेज है. जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें. अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें. समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा. नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं. और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते, जो ये एक वाक्य, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें. सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है. जय.
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं. कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा. साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को. शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से. और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश. लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं. तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं.
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ.
0: अच्छा.
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था. और आज भी हम जो है, आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ.
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं. किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है.
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते
1: हैं फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है.
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ. आप हैं तो हम हैं. 90 साल, 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है. आप भी हमारे साथ रहें.

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

तो हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम और आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी की जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ सपनों की लंबी लिस्ट है तो दूसरी तरफ डेडलाइंस और जिम्मेदारियां। कभी कॉलेज के असाइनमेंट्स, कभी करियर की चिंता, है ना, कभी दोस्तों के साथ वो मेमोरीज, तो कभी खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश। हम सब अपनी अपनी रफ्तार में दौड़ रहे हैं। कोई अपने सपनों को हकीकत बनाने में जुटा है, कोई नई स्किल्स सीख रहा है, कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस भागदौड़ के बीच कभी कभी जरूरत होती है कुछ पल रुकने की, मुस्कुराने की और अपने मन की बात सुनने की। यही तो है युवाणी का मकसद, युवाओं की बातें, युवाओं के विचार और युवाओं की कहानियां आप तक पहुंचाना। यहां बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, उन अनुभवों की जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और उन प्रेरणाओं की जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो अगले घंटे तक शाम 6 बजे तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए ढेर सारी सकारात्मक पॉजिटिव बातें, नए विचार और कुछ ऐसा जो शायद आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और चलाते हैं आज का पहला गीत।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी

का मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। दोस्तों एक सवाल है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पढ़ने बैठे पूरे जोश के साथ किताब खोली पेन निकाला और फिर 5 मिनट बाद नींद आ गई या फिर ऐसा कि पढ़ाई शुरू करने से पहले लग रहा था कि यार आज तो 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक बिस्तर बहुत प्यारा लगने लग गया। सच कहूँ तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, लगभग हर स्टूडेंट इससे गुजरता है, मैं खुद इससे कई बार गुजरा हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि जब हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं या मोबाइल चला रहे होते हैं तब नींद कहीं दिखाई ही नहीं देती, लेकिन जैसे ही किताब सामने आती है नींद को भी शायद पता चल जाता है। कई बार आलस दोस्तों पढ़ाई से नहीं आता, हमारे मूड से आता है। अगर हम पहले से ये सोच लें कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा तो काम शुरू करने का मन ही नहीं करता, लेकिन अगर बस ये सोचे कि चलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं तो अक्सर वो 10 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। और एक बात की पढ़ाई कोई सज़ा नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि पढ़ाई एक प्रिविलेज है जो हर किसी को नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इसे बोझ समझेंगे ना उतना ही मन भागेगा। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना, थोड़ा टहल लेना या पढ़ने का तरीका बदल लेना ये भी तो काम आता है। इसलिए तो आप इंटरनेट पे कभी सर्च करेंगे इफेक्टिव पढ़ाई की कुछ टेक्निक्स, तो कुछ टेक्निक्स आपके सामने आती है जैसे पोमोड्रो। इसमें आप पढ़ाई करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, तो इससे आपका माइंड भी उस नॉलेज को अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। और मुझे लगता है ना कि हम सबके पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो कहता है कि भाई मैं तो ना पूरी रात भर पढ़ा, लेकिन असलियत में आधा समय वो मोबाइल में बिता देता है और बाकी आधा समय नींद से लड़ने में निकल गया होता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय आप अपनी रफ्तार पर ध्यान दीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी बिल्कुल ना पढ़ने से कहीं बेहतर है। और हाँ, अगर पढ़ते समय नींद आ ही जाए तो खुद पर ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, कभी कभी शरीर को आराम की भी तो ज़रूरत होती है। बस कोशिश यही हो कि आलस आदत ना बने। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए लेकिन खुद पर ज़्यादा दबाव मत डालिए, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ सभी इम्पॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा अनुशासन, थोड़ा आराम और थोड़ा सा धैर्य, यही सबसे बड़ा मंत्र है।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों जरा अपने बचपन को याद कीजिए, वो गली में क्रिकेट खेलना, पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी, कबड्डी या फिर दोस्तों के साथ पार्क में दौड़ना, कितना मजा आता था ना। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खेलना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सबका ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन्स के सामने ही बीतता है। इसी बात की अहमियत को समझाने के लिए हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस पहली बार 11 जून 2024 को मनाया गया था और इसे यूनाइटेड नेशंस ने एस्टैब्लिश किया था। इस दिन का मेन मोटिव है सिर्फ खेल कूद को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना भी कि खेलना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों जब बच्चे खेलते हैं तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि नई चीजें सीखते हैं। खेल उन्हें टीमवर्क, धैर्य, आत्मविश्वास और समस्याओं का समाधान ढूंढना सिखाता है। और सिर्फ बच्चों की बात क्यों करें, बड़े लोगों के लिए भी खेल और शारीरिक गतिविधियां बहुत ही जरूरी है। थोड़ी देर खेलना या कोई पसंदीदा खेल खेलना तनाव कम कर सकता है, मन को ताजा रखता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खेल एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें बाहर निकलने, नई चीजें सीखने का भी बहुत बड़ा अवसर देता है, नए दोस्त भी बनाने का अवसर।

देता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि दोस्तों, खेल का मतलब ना हमेशा प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं होता। कभी कभी सिर्फ मज़े के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना अच्छा जीतना अच्छा लगता है, लेकिन खेलना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर क्यों ना हम एक छोटा सा संकल्प लें कि रोज़ थोड़ा समय किसी ना किसी खेल या शारीरिक गतिविधि के लिए ज़रूर निकालेंगे। चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, साइकिल चलाना हो या कोई आपका फेवरेट स्पोर्ट। तो आप अपने दोस्तों को कॉल कीजिए, उनको बुलाइए और उनके साथ खेलिए, क्योंकि आखिर खेल हमें सिर्फ फिट नहीं बनाता बल्कि खुश भी रखता है। FM 102.3 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युवाणी, मेरे साथ यानी स्वर्णिम के साथ। अब आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: उन्नीस सौ सत्ताईस से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है युवा दिल से। इस सेगमेंट में मैं आपके लिए लाया हूं योगा के ऊपर एक काफी ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, तो चलिए सुनते हैं।
1: नमस्कार श्रोत, योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं जो पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से योग का अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में योग के कारण कई सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद स्वर्णिम, नमस्ते सभी को, मेरा नाम गुंजन सिक्का है।
1: तो गुंजन जी, हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने योग शुरू करने का फैसला कब और क्यों किया?
2: हाँ, मैंने 3 साल पहले योगा शुरू किया था। उस समय मेरे रूटीन काफ़ी बिजी रहते थे, मैं बहुत थका हुआ फील करती थी फैमिली बच्चों के साथ, और काफ़ी दिन भर के काम हो जाते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मुझे योगा शुरू करना चाहिए, तो मैंने योगा करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग 10-15 मिनट पहले डेली शुरू किया, इससे मेरी आदत बन गई।
1: तो अब जब आप नियमित रूप से योग करती हैं तो आपने अपने अंदर कौन कौन से बदलाव महसूस किए हैं?
2: हाँ जी स्वर्णिम, सबसे बड़ा बदलाव तो मेरे अंदर आया है मेरी ऊर्जा में, लेकिन मेरी एनर्जी बहुत बढ़ गई है। पहले मैं बहुत जल्दी थक जाती थी दिन भर, अब मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जरा सा काम करते ही थक जाऊं, मैं अगर मॉर्निंग में योगा कर लूं, मैं दिन भर एक्टिव हूं, और इससे मेरा एकाग्रता बढ़ी है मेरी, और मेरी मेंटल टेंशन स्ट्रेस बहुत कम हुआ है।
1: तो जब आपने योगा करना शुरू किया था तो क्या आपको तब ये कठिन लगता था या शुरुआत से ये आसान था आपके लिए?
2: शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं होता है, और सही में आसान नहीं था और ना ही बॉडी फ्लेक्सिबल थी। लेकिन मैंने खुद को एक चुनौती दी कि मैं रोज इसे नियमित करूंगी, चाहे मैं कितनी भी थकी होती थी, मैं 10-15 मिनट 20 मिनट करती ही थी। तो धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट करके मैंने अपना निरंतर अभ्यास किया योगा का, और फिर मैं अब कर पाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से।
1: तो गुंजन जी, आजकल हम अपने आसपास देखते ही हैं कि लोग पढ़ाई और काम के कारण लोग काफी टेंशन में तनाव में रहते हैं, तो क्या योगा इसमें मदद करता है?
2: बिल्कुल, योग केवल शरीर के लिए ही नहीं है बल्कि मन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं,

0: हैं तो हमारा मन शांत होता है और तनाव बहुत कम हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि योगा करने के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, लोगों के पास समय कभी भी नहीं होगा। मेरा मानना है कि रोज सिर्फ 15-20 मिनट भी अगर आप योग के लिए निकाल सकते हैं ना, तो ये एक तरह से हम अपना ही समय निवेश कर रहे हैं, जो आगे चलकर हमारे स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब आप अंत में हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को आप केवल एक व्यायाम न समझें, यह स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक और कदम है, और इसे हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। अगर आपके पास सुबह समय ना हो, अगर आप सुबह व्यस्त हो, तो शाम को करें, लेकिन जरूर करें, थोड़ी देर ही करें, पर करें योग, क्योंकि इससे हम आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज पाएंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप कितने सकारात्मक हो गए हैं जीवन के प्रति।
1: गुंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज का ये सेगमेंट काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

FM 102.3 3.6 पे दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी मेरे साथ यानी आपके दोस्त स्वर्णिम के साथ। अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी कवि और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही साहस, देशभक्ति और बलिदान की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। दोस्तों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को हुआ था। बचपन से ही उनमें देश के लिए कुछ करने की भावना थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश को आजाद कराने के लिए कई युवा अपनी जान का बलिदान देने को तैयार थे। बिस्मिल भी उन्हीं युवाओं में से एक थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिस्मिल सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक और कवि भी थे। उन्होंने कई कविताएं और लेख लिखे। बिस्मिल उनका उपनाम था जिसका अर्थ था घायल या समर्पित। उनका नाम सबसे ज्यादा 1925 के काकोरी कांड के लिए जाना जाता है। ये ब्रिटिश सरकार के खजाने को ले जा रही ट्रेन से धन लूटने की योजना थी ताकि उस धन का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में किया जा सके। इस घटना में बिस्मिल के साथ कई अन्य क्रांतिकारी भी शामिल थे। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों सबसे पहली सीख मिलती है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। जब उन्होंने देश की आजादी को अपना लक्ष्य बनाया तो फिर किसी

कठिनाई से पीछे नहीं हटे। दूसरी सीख ये मिलती है, वो है साहस। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने डर के बजाय हिम्मत को चुना। तीसरी सीख, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि पूरे देश के लिए संघर्ष किया। और चौथी सीख, ज्ञान और कर्म का मेल। वो क्रांतिकारी के साथ साथ लेखक और कवि भी थे। यह हमें बताता है कि विचारों की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कर्म की। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने सपनों से पहले देश के सपनों को महत्व दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन हमें ये सिखाता है कि महान बनने के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि बड़े विचार और मजबूत संकल्प चाहिए।

दोस्तों, अब मैं महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन का एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। साल था 1927। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी थी। वे गोरखपुर जेल में अपनी अंतिम घड़ियां बिता रहे थे। फांसी से एक दिन पहले उनकी माता उनसे मिलने जेल पहुंची। जेल के अधिकारियों को लगा कि बेटा अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाएगा और शायद रो पड़ेगा, लेकिन वहां जो हुआ वो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। जब बिस्मिल जी ने अपनी माँ को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर उनकी माँ ने कहा कि अरे, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, अगर मौत से डर कर रो रहे हो तो मुझे तुम पर गर्व कैसे होगा। माँ की बात सुनकर बिस्मिल मुस्कुराए और बोले, माँ, ये आंसू मौत के डर से नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान के आंसू हैं। मौत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए प्राण दे रहा हूं। अगले दिन 19 दिसंबर 1927 को वे पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम समय तक वंदे मातरम और भारत माता की जय

के नारे लगाए। दोस्तों ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा साहस डर का ना होना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए डर पर विजय पाना है। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन से दिखाया कि देश, आदर्श और लक्ष्य के लिए समर्पण कितना महान हो सकता है। इसलिए उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

FM 103.6 पे दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युवाणी, मेरे साथ यानी आपके दोस्त स्वर्णिम के साथ। दोस्तों ना जाने कितने ऐप्स होंगे जब आप अपना फोन खोलते हैं जिन पर हम रोज लोगों से जुड़े रहते हैं। कई लोगों की फ्रेंड लिस्ट में तो सैकड़ों नाम होते हैं, कई बार तो हजारों नाम होते हैं, और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन एक सवाल है कि अगर आज रात 2 बजे आपको किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो आप किसे कॉल करेंगे? यही सवाल लेकर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो टॉपिक है दोस्ती, ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों आज की दुनिया पहले से बहुत अलग है। पहले दोस्ती स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले या खेल के मैदान में होती थी। आज दोस्ती एक मैसेज से शुरू हो जाती है। कोई गेम खेलते खेलते दोस्त बन जाता है, कोई किताबों की चर्चा करते करते, तो कोई किसी कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। और सच कहूँ तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कई बार ऑनलाइन दोस्त हमें बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम उनसे अपनी बातें खुलकर शेयर कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। ऑफलाइन दोस्ती की अपनी एक अलग ही बात होती है। वो दोस्त जो आपके साथ क्लास में बैठता है, जो आपके जन्मदिन पर अचानक सामने आ जाता है, जो आपकी हंसी देखकर समझ जाता है कि आप सच में खुश हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो दोस्त जो कहता है कि चल बाहर चलते हैं, तो कुछ ज्यादा ही परेशान।

हाँ लग रहा है। ये बातें शायद किसी चैट बॉक्स में पूरी तरह महसूस नहीं की जा सकती, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन दोस्ती कमजोर है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। असल में दोस्ती की ताकत इस बात से तय नहीं होती कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन। दोस्ती की ताकत तय होती है भरोसे से, समझदारी से और साथ निभाने से। अगर कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी सफलता पर खुश होता है, आपकी परेशानी में आपका हौसला बढ़ाता है, तो वो एक अच्छा दोस्त है, चाहे वो आपके शहर में रहता हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में। और शायद यही आज की यूथ की सबसे खूबसूरत बात है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। हम अलग अलग जगह, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारों वाले लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही हम उन लोगों को भी कदर करनी चाहिए जो हमारे आसपास हैं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, आज जब आप अपने दोस्तों के बारे में सोचें तो ये मत सोचिए कि कौन ऑनलाइन है और कौन ऑफलाइन। बस ये सोचिए कि कौन आपके चेहरे की मुस्कान की वजह बनता है और कौन मुश्किल समय में आपका हाथ थामने के लिए तैयार होता है। क्योंकि आखिर में दोस्ती की असली ताकत वाईफाई के सिग्नल से नहीं बल्कि दिलों के कनेक्शन में होती है। तो एक गाना आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और आप आदत के मुताबिक मोबाइल ढूंढने लगते हैं, लेकिन मोबाइल है ही नहीं। सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का मोबाइल एक दिन के लिए अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो बहुत से लोगों की सुबह ही खराब हो जाएगी, क्योंकि अलार्म भी मोबाइल में, घड़ी भी मोबाइल में, और दिन की शुरुआत भी मोबाइल से ही होती है। कुछ लोग बार बार अपनी जेब टटोलेंगे, कुछ लोग बिस्तर के नीचे देखेंगे, और कुछ को तो ऐसा लगेगा जैसे उनका कोई बहुत कीमती दोस्त खो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद कुछ दिलचस्प चीज़ें भी होने लगें। नाश्ते की मेज पर लोग मोबाइल स्क्रीन की जगह एक दूसरे से बात करने लगेंगे। दोस्तों से मिलने पर एक मिनट बस ही रील देख लूं, इसकी जगह सच में बातचीत होगी। बच्चे शायद फिर से पार्क की ओर निकल पड़ेंगे, गली में क्रिकेट की आवाज़ फिर से सुनाई देगी, बैडमिंटन की रैकेट निकल आएंगे, और शाम को मैदानों में थोड़ी रौनक लौट आएगी। हो सकता है कुछ लोग महीनों बाद अपनी किताबों की अलमारी खोलें, कुछ लोग अपने पुराने शौक याद करें, कोई गिटार उठाए, कोई चित्र बनाए, तो कोई बस छत पर बैठकर शाम का आसमान देखे। हालांकि सच ये भी है कि मोबाइल के बिना बहुत से काम मुश्किल हो जाएंगे, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, मैसेज मैप्स, है ना, पढ़ाई और काम, सब पर असर पड़ेगा। लेकिन शायद इस एक दिन में हमें ये भी समझ आ जाएगा कि तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, पूरी जिंदगी बनने के लिए नहीं। मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं। तो दोस्तों, अगर मोबाइल सचमुच एक दिन के लिए गायब हो जाए तो शायद शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन हो सकता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा ज्यादा महसूस कर पाए, और कौन जाने उस दिन हमें ये भी पता चल जाए कि कुछ बेहतरीन पल स्क्रीन के बाहर भी हमारे इंतजार कर रहे हैं।

तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो कोई ना, मिलेंगे फिर से इसी जगह, इसी वक्त।

इसी समय। तो सुनते रहिए तब तक FM 102 103.6 आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। तब तक के लिए मैं स्वर्णिम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 102.3.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। इस वक्त आप आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उप प्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा

0: दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से, और आवाजें अलका याग्निक और सोनू निगम की।

श्रोता अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये गीत। लीजिए अब सुनते हैं अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म जब वी मेट से। गीत के बोल इरशाद कामिल के, संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवाएंगे, उससे पहले सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। सूचना चौपाल कार्यक्रम संबंधी। प्रिय श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 यानी आज शाम 7 बजे से लेकर 7:30 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ फसलों के लिए जैव उर्वरकों की उपयोगिता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती, कृषि विज्ञान केंद्र अंता 12। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 07442941142। प्रसारण समय गुरुवार यानी आज शाम 7 बजे से लेकर 7:30 तक सूचना समाप्त होती है। और आइए अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की ओर। सुनवाते हैं आतिफ असलम का ये गीत फिल्म रेस से, शब्द समीर के और धुन प्रीतम की।

अभी आपने सुना फिल्म रेस से ये गीत, और आइए अब चलते हैं फिल्म संगीत के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दर्द में। अरे धत, मैं तो पौटी कर। कोई नहीं, आराम से कर ले। हो गई, कर ली पौटी। अरे माया
1: आई माँ जी।
0: अरे ये पोछा वोछा बाद में लगाना, पहले चुन्नू की पौटी धुलवा दे।
1: लो दो,
0: इधर डाल, इधर ये पांव पे लग रही है, इधर
1: से दो, उधर से, उधर से दो।
0: हाँ
1: वो दो।
0: अब मेरा राजा बेटा अपनी माँ के पास दूध पीने जाएगा। माया मैं चुन्नू को बहू को देकर आ रही हूँ, तब तक तू ये चुन्नू की पोटी सामने जो खाली प्लॉट है ना वहाँ पे फेंक दे।
1: क्यों खाली प्लॉट में, क्यों बाहर, क्यों संडास में, क्यों नहीं? बाहर फेंकूंगी तो मक्खियाँ नहीं भिन आएंगी। हाँ
0: अरे तू कहना क्या चाहती है?
1: तो जरा सोचिए माँ जी, जब मैं चुन्नू की पोटी खाली प्लॉट में खुले में फेंक के आऊंगी तब उस पे मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, और फिर वही मक्खियाँ उनके खाने पीने की चीजों, मुन्ने की दूध की बोतल और घर की अन्य चीजों पे बैठ के उन्हें अशुद्ध नहीं करेंगी, बीमारियाँ नहीं फैलाएंगी।
0: हाँ ये बात तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
1: तो अब सोचिए माँ जी।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही महिला नेतृत्व आधारित विकास, उद्यमिता, कृषि और स्टार्टअप पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी शिरकत की। श्री शर्मा ने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं को पेश किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, रेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: इसके बाद श्री वैष्णव ने एमएनआईटी में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित

0: कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और रखरखाव नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% छूट दी जाएगी।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा

मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉक्टर मीणा ने 15 जून से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉक्टर मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिकतर तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गयी। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मॉनसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से

0: बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर रो उद्घाटन कीनो। प्रदेश हूँ राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया में अनिश्चितता रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली में राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रहा देश में केंद्र और राज्य सरकारां री भेली जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजा री मदद, बातचीत और विचारां रो लेन देन भी होनो चाहिए। मीटिंग में चोखी भनाई लिखाई, कौशल विकास और नौजवानों ने नौकरी धंधा रा मौका मुहैया करावन माथे सरकार रो खास ध्यान भेवन री बात कही जी। ईसा गई महिलावारी अगुवाई माए विकास, उद्यमिता, खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रे बारे माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच, उपलब्धियां और कार्य योजना मारी जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण, रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी रा परिसरों

0: जैसलमेर जिला रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट बूता वाला एफएम रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। ई मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता था का आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका माए संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: केंद्रीय मंत्री प्रदेश माए न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा कामा रोई जिक्र कीनो। वे कहो के एनडीए सरकार रेला रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: कार्यक्रम में राज्य रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुरी सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकारी मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कर वठे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वह विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप ने बढ़ावो देवन माथे जोर तीनो। केंद्रीय मंत्री जयपुर रा कृषि अनुसंधान केंद्र माए राखी जिया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भया। वह प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए खबर नवी सांसा गई बातचीत कीनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले काल जयपुर पधारेला। वह नशा मुक्त भारत अभियान रातेत रख्या जावन वाला कार्यक्रम माए खास पावना रातौर शिरकत करेला। मारो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान समारोह माए शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइया री तबियत खराब हेवन रा मामला री जानकारी लेवन सारू चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर माए डॉक्टरा और अहलकारा सागे मीटिंग कीनी और हालात रो जायजो लीनो। वे अस्पताल माए भर्ती महिलावां री साता पूछी। मंत्री जापा वाली लुगाइया रा परिवार वाला सागे बातचीत कर वाने बेहतर इलाज रो भरोसो दिरायो। चिकित्सा मंत्री खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के मामला री विगतवार जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट मिलिया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला। ई मामला नलेर कांग्रेस रा कार्यकर्ता आज पीबीएम अस्पताल परिसर माए सरकार रे खिलाफ प्रदर्शन कीनो और नारा लगाया। वे वाकया री आला दर्जा री जांच करावन और दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई री मांग कीनी। ई दौरान पुलिस ने हल्को लाठीचार्ज करनो पड़ियो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर माए जैविक खाद बनावन रा कारखाना माए कथित गड़बड़िया रो खुलासो कीनो। वे कानोतारा एक कारखाना माए तय मानका रा इतर जैविक खाद बनावन रीठा कीनी। कृषि मंत्री इन खाद रा कट्टा और लेबल माथे मंडोड़ी जानकारियां ने भरमावन वाली बताई। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा बतायो के काश्तकारा सागे किड़ी भांतरी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करी जावेला। वे कहो के नकली खाद बीज बेचण वाला रे खिलाफ आखा राज्य माए अभियान चलायो जा रियो है और दोषी मिलन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेला।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों

0: बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का खुद से प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
1: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश और राज्यसभा रे तीन सीटों का द्विवार्षिक चुनाव सारू तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया है। राज्यसभा चुनाव रा रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी रा डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और कांग्रेस रा नीरज डांगी रा चुनिया जावन रो ऐलान कीनो और वाना चुनिया जावन रा सर्टिफिकेट तीना। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। शहरी शिविरा में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और फ्री होल्ड पट्टा जारी करण समेत जनता रा भलारी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो लेवण सारू पात्र लोगों अर्जियां ली जावेला। नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा बतायो कि लारला बरसा री लीज री बाकियात री रकम एक मुश्त जमा करावण पर ब्याज माए पूरी छूट दी जावेला।
2: नगर निकायों में कैंप लगने, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देश किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
1: आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग कर जरूरी हुक्म दीना। वह राज्य में चौमासारी ऋतु में बाढ़, पानी भरण, घनी बिरखा वेवण और दूजी कुदरती आपदाओं रो सामो करण सारू मिलर तैयारियां करण माथे जोर दीनो। डॉक्टर मीणा 15 जून नु राज्य और जिला स्तर माथे आपदा नियंत्रण कक्ष चालू करण रा हुक्म दीना। आपदा प्रबंधन मंत्री कहो कि चौमासा माय हालात माथे लगातार निगरानी राखण सारू वेदर वॉच ग्रुप बनाई चियो है। वह सगड़ा बंधा और एनिकटा ने मरम्मत और रख रखाव तय करण रा हुक्म ही दीना। अरब मौसम, प्रदेश में पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीच आज कठे कठे मौसम में बदलाव रा आसार है। 12 जिला में आंधी बारिश सरू चेताई चियो है, जबकि कठे कठे ओला पड़वारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवण री राय दी रिची है। इबीचे आज कई ठोणा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करी चियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा माथे साइबर अपराधा रा बद्धता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र री ओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है, जहां नजरिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल, डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन नजरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेल और बनाई जा पेट्रोल माथे एक्साइज ड्यूटी माफ कर दीनी है। वित्त मंत्रालय कानून जारी अधिसूचना रे मुजब 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथे एक्साइज ड्यूटी नी लागेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 मत है 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया माय उथल पुथल रा मौजूदा दौर माई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 kW FM ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेश और राज्यसभा चुनाव माए तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया, दो सीटा भाजपा और एक कांग्रेस रा खाता माए। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण

0: सेवा शिविर लगाया जावेला। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। शाम के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: ढोल बाजे और नगारा बाजे, बाजे रे खड़ताल, बेला की गुगर माला और मंदिरा में ताल। लोग किसान मायो आज आपनी कोटा बूंदी का चम्बल पर आगिरे चौपाल, आगिरे चौपाल। संदाई कातकार भाई बना ताई सबाई घनी घनी राम राम। किसान मायो कहते न क आपन ताई अगर अपन काम करता रहेगा, चलता रहेगा तो आप शरीर भी चलता रहोगे, साथ में आपने जो हलचल होगी उस अपना शरीर का जितनी बीमारी आ जाए वो भी दूर होगी। और खेल ऐसी चीज है जिसो अपन नई सारी बीमारियां भगा सका जा। बचपन में अपन घना तरह खेल खेले जा, कबड्डी खेले जा, खो खो खेले जा, गुलाम लागड़ी खेले जा, बागा दौड़ी करे जा, छेणा पत्ती खेले जा, पर आजकल देखो ये सब खेल खत्म हो चुके हैं। धीरा धीरा धीरा ये सब चीजें कहे एक कोणा में चल गई। और आजकल बच्चा कहे करे बस आओ चे और मोबाइल पर देखे गेम चलाओ चे और बैठ जाओ चे, ताकि वहां को विकास रुक गयो। तो अगर अपन खेल खेलेगा तो भागगा, दौड़ेगा, कूदेगा तो अपना शारीरिक विकास भी होगो, मानसिक विकास भी होगो। और देखो कहे कि भूख भी ज्यादा लागे से, जब अपन भागगा दौड़ा तो पसीनो भी आओगे, शरीर की गंदगी भी घटेगी, बीमारियां भी कम होगी। तो आपने खेल खेलने से ऐसा ही आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो किसानों में आओ खेल दिवस यो को देखो खेल से यो जो बच्चा का जीवन में खेल को महत्व बढ़ावा देवा के लिए 11 जून यानी कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का रूप में मनाया जाओ चाहे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार का संरक्षण, सतत विकास और खेला में योगदान का ताई रेखांकित करवो चाहे। यो दिन सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति का ताई बढ़ावा देवा के लिए मनाया जाओ चाहे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ चाहे। खेला के माध्यम से अपन नेतृत्व, धैर्य, समन्वय, प्रेरणा और टीम भावना जैसा विभिन्न कौशल सीख सका चा। व्यक्तिगत निर्माण में खेल को बहुत मौचिक समय में आयो। और इतिहास का महानतम जो हॉकी खिलाड़ी मतलब एक मेजर ध्यानचंद, जगत अपन हॉकी को जादूगर भी खा चा। और वहाँ का जैसा अन्य खिलाड़ियों का ताई सम्मानित कर जगत अपनो जीवन खेला का समर्पित कर दियो। वो धन हजारा जीवन का ताई खेला का ताई महत्व का समझवा के बारे में यो धन चिक समय। और खेल अपने जो मांसपेशा है वहां मजबूत बनाओ चे और अपना शरीर ताई स्वच्छ रखे चे। समय में आओ बातें चाहता अपन और भी करेंगे, अपने चौपाल में देखो खजानो चे बातचीत को। तो आज से आप प्रायोजित कार्यक्रम KVK कृषि विज्ञान केंद्र अंता द्वारा, ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि विज्ञान केंद्र अंता। और किसान में आओ आज आपने चौपाल में जो आज का फौना है वही विराजमान है, वो भी आ चुका है। तो आज जो अपना फौ है वो है डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती जी। आज आपने जो विषय रहो समझ आयो खरीफ की फसल में जैविक उर्वरकों को उपयोगिता कहीं से आपन कृषि को उपयोग कर सका चा। और आप सीधा डॉक्टर साहब से ये विषय पर फोन कर बात कर सको चो। तो मा का फोन नंबर है आप ये बता दें एक बार, 2941142। कोटा से बाहर का जो किसान श्रोता है, जो किसान मन भाई है, वो यहाँ नंबर का आगे 0744 लगा सीधे डॉक्टर साहब से बातचीत करते थे। तो आज आपने चौपाल में विराजमान डॉक्टर साहब को स्वागत है। डॉक्टर साहब आपको माँ की चौपाल में गणोर स्वागत है। राम राम साहब। डॉक्टर साहब आज सबसे बड़ा विषय है और सबसे पहले एक ही मन में विषय आओ, एक ही बात आओ कि जैविक उर्वरक, तो जैविक उर्वरक छे कहीं या बताओ सबसे पहले। तो आप
1: देखो जैविक उर्वरक इसमें अपने रासायनिक खेती में जो अपना चल रहा है उसको सुधारने के लिए और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि जितने भी अपने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं प्लांट के लिए या फिर फसलों के लिए, तो उनको क्या करते हैं ये उनको मतलब उसको अवेलेबल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करके और उसको पौधों तक पहुंचाते हैं ताकि उसका विकास अच्छा हो और अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छा प्रोडक्शन हो और जो अपने

0: का रासायनिक खेती पे जो अपनी उपलब्धता है या फिर अवेलेबिलिटी है उसको अपन कम कर सकें।
1: जी
0: और इसके अलावा भी अपन जैसे सूक्ष्म जीव जो है वो अपनी सोयल की जो मिट्टी की उर्वरता है उसको भी बनाए रखते हैं, और अपने जो एनवायरनमेंट है, जो अपना क्लाइमेट है, या फिर जो अपनी अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है
1: जी
0: जैसे गर्मी बढ़ रही है,
1: जी
0: तो उसमें भी वो मदद करते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और जितना भी अपन जो प्रोडक्शन करते हैं किसानों के लिए भी ये हेल्पफुल है। और दूसरा क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों का मेन मोटिव ये रहता है कि जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अभियान चला रही है, राजस्थान गवर्नमेंट अपने अभियान चला रही है
1: जी
0: कि जितना भी अपने जैसे पोषक तत्वों की कमी से लोगों में क्या कि डिजीज हो रहे हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं,
1: जी जी
0: जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट पे अभी अपने चल रहा है, जैसे आयरन और जिंक पे भी चल रहा है, तो उनके भी पोषक तत्वों को उनको बढ़ाने के लिए जैसे फसलों में अपने जैसे अनाजों में उनकी उपलब्धता कैसे बढ़े,
1: जी
0: तो उसके लिए क्या किया है कि जो भी अपने साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने क्या किया उस पर रिसर्च किया, उसमें आइसो मतलब उसको अलग किया उस माइक्रो पे, और उस पर काम चल रहा है, और कई उनको बाय एज ए जैव उर्वरक के रूप में उनको यहाँ पे लॉन्च किया ताकि किसान भाई उसको यूज कर सके।
1: जी
0: और जो भी अपने जो सूक्ष्म जीव जो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी कमी की वजह से अपने बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि जिंक की वजह से जैसे मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं रहती, जैसे मेंटली अपने बच्चे पैदा होते हैं
1: जी
0: कि वो जैसे पागल जैसे होते हैं, या फिर जैसे महिलाओं में जैसे अपने की खून की कमी जो मेजरली अपने देखी गई है, तो वो भी क्या कि आयरन एक इसका मोस्ट होता है जिसकी वजह से उसकी कमी को अपने दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे कि जैसे अपना जो प्रोटीन कंटेंट है, जैसे नाइट्रोजन की कमी अपने इंडियन सोयल में बनी रही है कि जो लगभग अपने 89 से 90% तक अपने पोषक तत्वों की कमी है, जो नाइट्रोजन की कमी है, और जो नाइट्रोजन की कमी को भरपूर मात्रा में ये वातावरण और एनवायरनमेंट में है, तो उसको उपयोग प्लांट डायरेक्ट प्लांट उसको उपयोग नहीं कर सकता, तो उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए या उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन सूक्ष्म जीवों का अपने को सहारा लेना पड़ता है
1: बिल्कुल
0: ताकि वो उसको फिक्स करे और कन्वर्ट करे ताकि प्लांट उसको यूज कर सके।
1: जी
0: और जो भी अपने रासायनिक खाद्य है जैसे यूरिया अपन यूज कर रहे हैं, बर-बर के डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, तो उसको भी अपन रासायनिक खादों पर भी निर्भरता को अपन कम कर सके।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आपने देखो जैविक उर्वरक छे कहीं बारे बताई किसान ने बनाया आपको बता दा का आज को अपनो जो कार्यक्रम छे प्रायोजित कार्यक्रम छे कृषि विज्ञान केंद्र अंता द्वारा प्रायोजित छे। जो भी किसान भाई खरीफ की फसल में जैविक उर्वरक का उपयोग और वहाँ की उपयोगिता के बारे में डॉक्टर साहब तो पूछ पूछा वो तो सीधा स्टूडियो का जो नंबर छे उस पर फोन करके बात कर सके छे। नंबर आपको बता दें एक बार और, अपना नंबर छे 2941142। यह नंबर का आगे किसान भाई 07444 लगा सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सके छे और खरीफ फसल में जैविक उर्वरता की उपयोगिता के बारे में सीधी जानकारी ले सके छे। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बातचीत कर रहे जा कि जैविक उर्वरक कहीं छे, तो बात यह हो डॉक्टर साहब कि जैविक जो उर्वरक छे की आवश्यकता क्यों पड़ी है बार आप बताएं।
0: देखो अब बार आपने चाल रही है कि रासायनिक खाद सुखाए अपनी मिट्टी पूरी खराब हो चुकी है, तो वो मिट्टी ने आप वापस किया सुधारा, तो उसके लिए कार्यक्रम गवर्नमेंट चला रखी है कि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद की जो उर्वरकता उपयोगिता उन्हें कम करो, और जितनी आप जैसे नेचुरल प्राकृतिक खेती है प्राकृतिक खेती प्रति ध्यान दो, तो उस मामला में अपने आगे बढ़ावा के लिए अपनी जो मर्दा की जो फर्टिलिटी अपनी जो उसकी जो चली गई उसको वापस रिकवर करने के लिए अपने को सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात है कि जैसे अपने न्यूट्रिएंट अपन दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा है कि अपन बायोफर्टिल माइक्रोब्स को तो भूल गए और उसके अंदर जैसे अपने रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, तो जिसमें क्या है कि जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है मिट्टी के अंदर वो भी क्या होती कम होती जा रही है।
1: बिल्कुल।
0: जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि अपने नाइट्रोजन देते हैं तो प्लांट उसको यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो जल्दी से गुड़ के और नीचे पानी में चला जाता है, अपना जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें चला जाता है, और वो अंडरग्राउंड वाटर अपना क्या होता है, पोल्यूशन हो रहा, पोल्यूटेट हो रहा
1: जी।
0: और वही वाटर अपन क्या करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, तो उससे भी अपने जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होता है, जैसे बच्चों के अंदर ऐसे डिजीज हो रहे हैं, और जैसे अपने और भी अपन जैसे डीएपी वगैरह यूज करें तो उसमें भी जैसे हेवी मेटल्स रहते हैं, जो भारी पोषक ये तत्व रहते हैं।

0: जिसकी वजह से जैसे केडीमियम हो गया तो इससे इटाइटाई डिजीज हो रहा है,
1: जी
0: बाकी और भी जितने मतलब उसकी जो कमी की वजह से बहुत सारे डिजीज मतलब अपने ह्यूमंस में भी हो रहे हैं, तो
1: जी
0: उस कमी को भी अपन दूर करने के लिए अपने को बायोफर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी है।
1: जी
0: दूसरा है कि जैसे कि अपन डाल तो रहे हैं, जैसे डीएपी आप डाल रहे हो,
1: जी
0: प्लांट को नीड है उसकी कि 20 किलो चाहिए, और अपन डाल रहे हैं कि 100 किलो डाल रहे हैं कि अपने को तो प्रोडक्शन बढ़ाना है,
1: जी
0: पर वो क्या कर रहे हैं कि वो फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं वो जाके एक

0: 20 किलो चाहिए और अपन डाल रहे हैं कि 100 किलो डाल रहे हैं कि अपने को तो प्रोडक्शन बढ़ाना है,
1: जी।
0: पर वो क्या कर रहे हैं कि वो फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं वो जाके एक जगह स्टोर होता जा रहा,
1: बिल्कुल
0: नीचे एक परत बना ले रहा है। उस परत की वजह से क्या हो रहा है कि न तो एरिएशन बढ़ रहा है
1: जी,
0: नहीं अपने जैसे प्लांट को पानी मिल पा रहा है और नहीं वो उसको न्यूट्रेंट के रूप में उसको मिल पा रहा है
1: जी, जी।
0: तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे फॉस्फोरस के लिए पीएसबी नाम का एक माइक्रो बैक्टीरिया होता है, उस जीवाणु को अपन डालने के बाद वो क्या करता है कि जो भी नीचे स्टोर हो गया
1: जी,
0: उसको क्या करता है वो सोलिबलाइज करने का काम करता है, कि घोलने का काम करता है ताकि प्लांट उसको यूज कर सके
1: जी जी जी।
0: तो
1: हाँ डॉक्टर साहब, एक किसान श्रोता लाइन पर है। हेलो, शायद फोन कट गयो। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप बात कर रहे हैं जैविक उर्वरक की आवश्यकता क्यों पड़ी
0: जी। तो जैविक उर्वरक की आवश्यकता जैसे आपने आप केमिकल खादा डाल आपने मिट्टी ने लवणीय कर लिया,
1: बिल्कुल,
0: तो उस भी आपने कहा चाहे कि सोइल की जो आपनी फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता क्षमता है, वह बहुत कम होती जा रही है
1: जी।
0: जैसे प्रोडक्शन पहले आपने प्रोडक्शन हो चो कि 100-150 क्विंटल आपने एक हेक्टेयर में हो जाओ चो, या 100-125 क्विंटल जैसे गेहूं में हो जाओ आपने प्रोडक्शन, पर वो धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या हो गया 70 पर आ गो, 70 क्विंटल पर हेक्टेयर पर आ गो, तो वो प्रोडक्शन आपका वापस बढ़ावा के लिए और जो आपने किसान भाइयों के जो लागत को कम करवा के लिए आप काय कर सकता है कि जैव उर्वरक है बाको आप उपयोग कर सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, या तो वही देखो आपने बात कि जैविक उर्वरक अपनी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप देख रहे धीरे धीरे आपने जो धरती जो बंजर होती जा रही है, आप दन बदन जो अपना रासायनिक खाद को ज्यादा कर रहे थे और जैविक आपने कतई भूल गया, इसलिए अपनी ये की आवश्यकता पड़ी। अब बात यह होता है डॉक्टर साहब, जैविक उर्वरक है तो खरी फसला में कई महत्व चुमा को
0: देखो, खरीफ फसलाम जैसे आपने हाड़ोती बेल्ट है तो आपने यहाँ पे चावल ज्यादा चावल आप पैदा करा है कि मान खरीफ के अंदर चावल हो गया, सोयाबीन हो गई, इसके लिए मूंग उड़द हो गया आपने, तो आप इनमें प्रोडक्शन करा तो एक अंदर भी आपने जितना भी दलहनी फसला चे दलहनी फसला के अंदर आप एक राइजोबियम नाम को एक जैव उर्वरक आप यूज करा चा, और जी आपने एक अंदर जो राइस है अपना जो चावल है धान है तो धान के अंदर आप यूज करा था जैसे एजोटोबैक्टर अपना आ गयो कि जो अपने ये जो सीरियल्स क्रॉप होती है उसके अंदर अपन यूज करते हैं उसको, तो उससे होता क्या है कि जो अपना प्रोडक्शन है प्रोडक्शन लगभग अपना 15-20% वहां पे बढ़ जाता है, और जो लागत होती है जैसे रासायनिक खादों से अपनी लागत बढ़ती जा रही है तो उस लागत को भी अपन 30-35% तक अपन उसको घटा सकते हैं, और दूसरी कि उस लागत को भी घटा सकते हैं जिससे किसान भाइयों को अपना जो भी।
1: डॉक्टर साहब, एक श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो
2: हेलो, आकाशवाणी कोटा।
1: हाँ राम राम साहब
2: जी। सर नमस्ते।
1: हाँ कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
1: प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको चौपाल में। कई प्रश्न चाहिए आपको डॉक्टर साहब से?
2: जी जैसे कि बताऊँ, अभी आपको बताऊँ जैसे हमें फसल लगाएंगे सोयाबीन की जी, उसके लिए तो हमने खेत को वैसे काफी अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है
1: जी,
2: तो बीज उपचार के लिए मतलब कौन सी दवाई का सही इस्तेमाल होगा?
1: जी जी जो सुनो डॉक्टर साहब बता रहे थे।
0: देखो बीज उपचार तो आप जैसे FIR हो जैसे फंजीसाइड हो इंसेक्टिसाइड हुआ है ना, आपको आप बीज उपचार में उपयोग कर सका जा। दूसरी बात है अगर ते सोयाबीन बो रहे हो तो सोयाबीन में अच्छो है कि थे जैसे कि रासायनिक खाद डालो यूरिया डालो तो उनकी उन कम करवा के लिए थे उनके अंदर एक राइजोबियम नाम को आपके बायोफर्टिलाइजर सूक्ष्म जीव वाला आवे है तो वो बायोफर्टिलाइजर ने भी थे यूज कर सको ताकि जो लागत भी कम हो और प्रोडक्शन भी था को बढ़े उसके लिए, और ताकि
2: एक बात और जानना चाहूंगा सर, जैसे कि ये उपचार के लिए तो विधि आपने बता दी है
0: जी,
2: इसके अलावा जैसे कि अभी सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी तो 25 जून के बाद में जब बरसात होगी तो उसके लिए मतलब सोयाबीन की फसल के साथ में हम और ऐसी कौन सी फसल लगाए ताकि ज्यादा मुनाफा हो?
0: जैसे ये तो अपना दलहनी फसलें आ गई तो इसके अलावा आप उड़द लगा सकते हो, मूंग लगा सकते हो
2: जी।
1: आपने चौपाल में फोन कर बहुत बहुत धन्यवाद साहब
2: जी, थैंक यू सो मच।
1: हाँ डॉक्टर साहब, और बात कर रहे थे जैविक उर्वरक, तो अगर बात कर रहे थे जैविक उर्वरक से यहाँ कई कई लाभ है?
0: देखो लाभ तो जैविक उर्वरक को तो हानि तो कोई है को नहीं आता नहीं, पर लाभ ही लाभ मिल है
1: जी।
0: यहाँ की आपने
1: साहब एक किसान श्रोता लाइन पर है। हेलो

0: जी नमस्कार।
1: राम राम साहब, कुछ साहब बोल रहा जो?
0: राम राम साहब, मैं गांव चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बालोतरा से जगदीश भारती बोल रहा हूँ।
1: वाह वाह भारती जी, बहुत बहुत स्वागत चौपाल में आपको। बताओ, कई प्रश्न चाहिए आपको डॉक्टर साहब से पूछो।
0: जी मतलब खेती किसानी का कार्यक्रम है, खेती बाड़ी का।
1: हाँ, आज को प्रश्न साहब, आप लोग खरीफ जो फसल है वहाँ में जैविक उर्वरकों का उपयोगिता चेक।
0: जी मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी बारिश कम होती है।
1: जी जी,
0: तो ऐसी कोई किस्म बताओ बाजरे की, मतलब कम बारिश से पक जाए ताकि।
1: जी, आज आपने जो साहब प्रश्न विषय जैविक उर्वरक जो खरीफ फसल उपयोगिता जैविक उर्वरक की, एक बार प्रश्न बताओ आप।
0: जैविक,
1: हाँ जैविक उर्वरक के क्या उपयोगिता अपना फसल खरीफ की फसल में। हाँ डॉक्टर साहब, शायद अपना श्रोता को फोन कट गयो, तो अपन बातचीत कर रहे थे जैविक उर्वरक वहाँ को कहीं कहीं लाभ चाहिए।
2: देखो जिया, तो अपना जैविक उर्वरक को लाभ है कि जिया अपने अबार एनवायरमेंटल पोल्यूशन चाल रहे हो, पर्यावरण प्रदूषण बढ़तो जा रही है।
1: जी,
2: तो पर्यावरण प्रदूषण ने आप कम करवा के लिए, और जो अपने मिट्टी में जो कंटामिनेशन हो रही है, जहाँ अपना मिट्टी खराब होती जा रही है, वो मिट्टी ने सुधारवा के लिए आप जैविक उर्वरकों को काम लिया था।
1: जी डॉक्टर साहब, एक किसान लाइन पे। हेलो, राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: हाँ कौन साहब बोल रहे हो?
0: बारा से बोल रहा हूँ भाई साहब।
1: हाँ साहब,
0: जो जैविक उत्पाद ऐसे भी आए हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो और कम उत्पाद में ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: हाँ तो सुनो, बता रहे डॉक्टर साहब।
2: देखो साहब, जैविक उर्वरक जो है अपने वो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, और अपने सॉलिड फॉर्म में जो अपना जो आता है, जैसे कि राइजोबियम हो गया, इसके अलावा पीएसबी हो गया, माइक्रोराइजा हो गया, तो अपने सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में ही अवेलेबल है सर।
0: ये आर्थिक रूप मतलब जैसे वो उनसे सस्ते ही पड़ते होंगे ना साहब?
2: हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर की जो आप डालते हो, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, उसकी जो आपकी जो डालना है उसकी क्वांटिटी को वो कम करते हैं।
0: मतलब आर्थिक रूप से पैसे से कम ही पड़ेंगे ना, कि ज्यादा यूं लागत ज्यादा आती है?
2: जी जी नहीं, उससे लागत आपकी घटेगी सर। जैसे आपकी खेती में आप लागत जैसे उसमें आपकी 100% आ रही है, तो वो आपकी 30% तक आपकी लागत घट जाएगी उसमें, और वो आपका मदद करेगी कि वो आपकी जो आपकी क्रॉप है उसको जैसे कीटों से और रोगों से भी वो दूर रखने की कोशिश करेगी। माइक्रोब्स की यही खास बात होती है, और दूसरी है कि आपकी जो मृदा की जो उर्वरकता है उसको लंबे समय तक बनाए रखेंगे सर।
1: आपने चौपाल में फोन करो, एक धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम
1: डॉक्टर साहब, अपना फिर अपना किसान सोच बात करूंगा ई अंतराल के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है और कितना मनमायो आज अपनो कार्यक्रम छ सजीव फोनिंग कार्यक्रम और ये कार्यक्रम का प्रायोजक छ कृषि विज्ञान केंद्र अंता और आपने चौपाल में विराजमान छ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती साहब जो अपना तक जानकारी दे रहे छ। जो भी किसान भाई इस विषय पर जानकारी चाहे वो सीधा फोन नंबर जो अपना छ 2941142 और एक 0744 लगा सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते और आज को विषय है खरीफ फसलों में जैविक उर्वरकों को उपयोगिता कहीं से। तो डॉक्टर साहब आपको और सभी अपना किसान को स्वागत है फिर दोबारा और डॉक्टर साहब बातचीत करा जाएगा अपना जो जैविक उर्वरकों को लाभ कहीं से। अब डॉक्टर साहब बात यह हो कि जैविक उर्वरक तो कहीं यहाँ से रोग कीटाणु से बचे जा सकते हैं या नियंत्रण किया जा सके यहाँ से।
3: जी सर बिल्कुल, अपन जैसे कि इसके रोग जैसे अपने कीट है उनसे भी अपने बचे जा सकता है।
2: डॉक्टर साहब एक किसान श्रोता लाइन पर। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ राम राम साहब।
4: राम राम साहब,
2: कौन साहब बोल रहे थे, कहाँ से बोल रहे थे? अच्छा दुर्गे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको चौपाल में। पूछो क्या प्रश्न
4: है? बिल्कुल यो गाय का जो कार तो बिल्कुल ही बंद करे जो साहब बैठा आपने स्वास्थ्य भी बहुत बुरो फर्क पड़ रहे थे और जमीन भी आपने टॉस होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो बिल्कुल ही हमारे शाम तो बंद कर देती है, बेटर ही दे देती है कहा तो सरकार चला देते हूँ नरगे आपने सामना लगाऊ जानी मैं जो भवन है आपने दर्शन भवन का फैली
1: जी जी जी
0: और ये भवन जाएंगे जो दादू ने
1: हाँ हाँ
0: सामना कहता हूँ बड़ा कहा तो जैसे बनाई कहा दे भाई कहा कहा लगा भाई कहा जरूरत
1: को अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
0: तुम्हारे शाम तो बिल्कुल ही बंद कर पहुंचे है जी इन्हें साथ में ये पीना और इन्हें
2: हाँ बिल्कुल सर, ये अपने अभी आने वाले टाइम में जितने भी अपने रासायनिक खाद्य हैं उनकी कमी अपने मतलब अपने को अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे अपने जो जैव उर्वरक है जैव उर्वरक उनकी जगह ले रहे हैं, और दूसरी बात है कि जैसे आप ग्रीन जो खाद बता रहे हो वो ग्रीन खाद भी अपने यूज कर सकते हैं, और जिससे ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है अपने से खेत के अंदर उसकी अवेलेबल उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा कि आप ये जो मिट्टी है उसमें जो सूक्ष्म जीवों की जो उसकी पॉपुलेशन है या उसकी संख्या है वो बढ़ेगी और आपकी जो मिट्टी है वो फर्टाइल होगी। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने चौपाल में फोन करो। राम राम साहब।
0: राम राम।
1: हाँ डॉक्टर साहब, अपन बात कर रहे थे कि जैविक उर्वरक से रोग कीटा पर नियंत्रण पाया जा सके।
2: जी बिल्कुल सर, अपन जैसे कि नाइट्रोजन की अगर अधिकता से अपन जैसे नाइट्रोजन की मात्रा क्वांटिटी अगर ज्यादा डाल दी फसल के अंदर
1: जी,
2: तो उसकी क्या फसलों पे क्या कि कीटों का जो आक्रमण है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि प्लांट को जल्दी से बढ़ा देता है, और दूसरा है कि इसमें जो जूसी पार्ट होता है उसको बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि अपने जो सूक्ष्म ये जो अपने है वो क्या आकर्षित होते हैं, और जो अपने सकिंग पेस्ट होते हैं जैसे अपने चूसने वाले रस चूसने वाले कीट होंगे वो उस पे आकर्षित होंगे।
1: डॉक्टर साहब एक एग्जाम स्थलान पे जाए। हेलो, शायद फोन कट गया हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब,
2: तो उससे कहा आपने वो कीटा की संख्या बढ़ ली
1: जी।
2: पर जी आप अगर जैव उर्वरक यूज करना चाह तो उसकी उपयोगिता सु वो कहे चाहे अपने जत्ती प्लांट ना अपने नीड चे बत्ती वो कहे कर चे बिना उपलब्धता कराव चे, जिसु कहे चे अपनी जो कीटा की जो संख्या चे बी की बी भी अपन आप रोकथाम करवा में या फिर कंट्रोल करवा में।
1: डॉक्टर साहब एक किसान श्रोता लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ राम राम साहब।
0: राम राम जनन जी भाई,
1: कहाँ से बोल रहे हो साहब?
0: अमर बाजे बोल रहे हो जनन जी भाई।
1: हाँ जी बोलो बोलो, क्या प्रश्न है आपको डॉक्टर साहब से? अच्छा हाँ डॉक्टर साहब,
2: देखो जैविक खाद आप अपने आप आसपास जो भी जैसे भी कोई आपकी कृषि की जो भी संस्था है वहाँ से भी आप ले सकते हो, दूसरी बात है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है अपने आसपास के वहाँ से भी आप वहाँ से ले सकते हो, या फिर जो आपके रिटेलर अपने जो खाद बीज की दुकान है वहाँ पे भी आपको जैविक खाद की आपको उपलब्धता हो जाएगी। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने चौपाल में फोन करो। राम राम साहब। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बातचीत कर रहे थे कि जैविक उर्वरकांशु कहीं कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं।
2: हाँ, तो जी आपने नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ती जा रही है तो विशु कहें आपने सकिंग वाला जो अपना रस चूस वाला कीड़ा ज्यादा बढ़ जावे
1: जी,
2: तो फिर रस चूस वाला कीड़ा बढ़ता बढ़ता कहीं करे कि भाई अपनी फसल ने डेमेज या खराब कर वो स्टार्ट कर देवे
1: जी,
2: तो उनसे अपना रोकबा के लेकर अगर आप जैसे कि आप यूरिया कम डाला या फिर रासायनिक खाद कम डाला और जो जैविक उर्वरक से बस जैविक उर्वरक की आप क्वांटिटी बढ़ा
1: दिया
2: जी, जिसू होगा ही आपने कि प्लांट ने जत्ती आपने जरूरत से बत्ती वो काय करे चाहे आपने जैविक उर्वरक बुन उपलब्धता कराओ जे
1: बिल्कुल,
2: ताकि आपनी जो जो भी है वो की कंट्रोल कर सका।
1: डॉक्टर साहब एक किसान श्रोता लाइन पर। हेलो
0: हेलो।
1: हाँ राम राम साहब।
0: राम राम साहब,
1: कौन साहब बोल रहे हो?
0: कलिंदा से बोल रहे हैं, द्वारकलाल जी।
1: अच्छा द्वारकलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछो प्रश्न आपको। अच्छा आज को आप जो विषय है वो खरीफ जो फसल अपनी जैविक उर्वरकों का उपयोगिता एक बार हम फिर भी डॉक्टर साहब बताओ आपको सुनो आपको प्रश्न बताओ।
2: हाँ सर, आपका क्वेश्चन आप एक बार रिपीट करो तो।
0: जी
2: आपको बताओ, क्वेश्चन दोबारा पूछो एक बार।
0: ये कर रहा हूँ सर जी, गड्ढा की तैयारी के लिए काय करनी पड़ेगा मैं।
2: गड्ढा की तैयारी जी आते अब गड्ढा को बोले तो थे धान लगाओ चाहो तो
0: तैयार कर रखा है।
2: हाँ खेत तैयार कर रखे हो तो खेत तैयार कर रखे हो तो एक अंदर था कि एक तो मिट्टी में बढ़िया क्या नाम से थे बढ़िया बिन जोतर बढ़िया बिन आपने वो
1: गरड़ कर लियो
2: और गरड़ करने के पाचे जिया मान लियो थे बायो फर्टिलाइजर भी यूज करबो चाहो छो तो बीम कहे जिया थे

0: यहीं थे बिना ट्रांसप्लांट के लिए निकालो या फिर उन्हें आप लगावा के लिए निकाला ना तो बीम कहीं से आप या 24 घंटा या फिर 2-3 घंटा पहले कहीं से जो भी आपने बायो फर्टिलाइजर से उम डबोर आप रख सका था डबोर रखा तो फिर पाँच कहीं से आपने ऊपर आसू देवा की जरूरत कौन रहे और आप अपने डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर देना तो भी आपने कहीं से उनमें न्यूट्रिएंट की कमी को ना हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपने चौपालों फोन करे और राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
1: हाँ डॉक्टर साहब बात चाले चाहे अपने के जो जैविक उर्वरक से कहीं वो कीट और रोगों से नियंत्रण कर सके छे और दूसरी बात यह जगह जैसे अबार अपना किसान भाई जो रासायनिक खाद पर निर्भर हो गया तो क्या यो कम की वजह से कहते जैविक उर्वरक
0: जी बिल्कुल साहब आप जो आपने रासायनिक खाद की उर्वरकता जो उपलब्धता या फिर उनकी कमी के आप अभी कमी लाभा के लिए आप कहेंगे जैविक उर्वरक यूज कर सका जा जिसको कहें जा आपने 30-40% तक आपने जो कार्बनिक या फिर रासायनिक खाद से वह आप कमी ला सका जा और जो अपनी जो क्रॉप की फसल की जो उत्पादक क्षमता से वह आप 30-35% तक आप बढ़ा सका जा
1: जी
0: और हाँ सर तो आपने वो भी बढ़ा सका था और जो आपने मिट्टी के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव से और अलग भी बेबी का ऐसा आपने जो भी आपने न्यूट्रिएंट जो आवश्यक पोषक तत्व है बाकी के लिए भी वो कहें बहुत बेनिफिशियल काम करे करे से।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बात बताई और किसानों आयो आज आपनो कार्यक्रम से सजीव फोनी कार्यक्रम और ये कार्यक्रम का प्रायोजक से आपने कृषि विज्ञान केंद्र अंता और आज आपने चौपाल में विराजमान से डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारती जी जो भी किसानों भाई खरीफ की फसल में जैविक उर्वरक की उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहो चे वो सीधा माँ का जो नंबर है वो नंबर फोन करके सीधा डॉक्टर से बातचीत कर सकते नंबर से 2941142 कोटा से बाहर का किसान श्रोता या नंबर का अगर 07444 लगा सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते है। डॉक्टर साहब अब बात हो जैसे जो जैविक उर्वरक है तो यहाँ को उपयोग क्या करे किसान भाई
0: देखो उपयोग करवा को कि आप 3 प्रोसेस रिया करे
1: जी
0: जे मान लो आपने खड़ी फसल में उपयोग करनो छे या फिर फसल लगा बस पहली उपयोग करनो छे।
1: डॉक्टर साहब किसान श्रोता लाइन पर हेलो
3: डॉक्टर साहब और रंगा भाई के ताए राम राम।
1: राम राम साहब राम राम कहाँ से बोल रहे हो कौन बोल रहे हो
3: गाँव बोरा जेडी जिला जिला पारा सत्यनारायणपुर
1: वाह वाह सत्यनारायण जी बहुत बहुत स्वागत आपको बोलो आपको प्रश्न कहे
3: थे और प्रश्न ये है कि जैसे हम मक्का की फसल ले बोता हूँ तो ये कुछ जैविक उर्वरक उपयोग मिलिया और ये कुछ किसी टाइम पे देवा
1: जी बता रहे डॉक्टर साहब सुनो आप
0: देखो मक्का के अंदर आप एजो इस परिलम नाम को एक आपने जैविक उर्वरक आवे छे भी जैविक उर्वरक को आप या तो बिना सीड थ्रू ट्रीटमेंट कर लिया कि जैसे आप जैसे गुड़ ले लिया आप गुड़ 250-300 ग्राम गुड़ आप 1-2 लीटर पानी में लेर उन गर्म कर लिया ताकि वो अच्छे से गुड़ जाए फिर वो आपने जो भी आपने जैव उर्वरक छे जैसे अगर थे लिक्विड ले आया तो लिक्विड में अपन में यो चाय जे गुने और या फिर थे मान लो कि थाने वो ठोस में मिलियो छे तो बिन का थे बिक मान दाल के भी जो आप जेगरी बनाया था बिक अंदर डाल के और बीमा आपा सीड ने ट्रीटमेंट कर लिया ताकि फिर बाद इन 2 घंटा सुकार फिर अपना बोबा के लिए यूज कर सका था।
1: सत्यनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने सवाल फोन करो। राम राम साहब।
3: राम राम।
1: हाँ डॉक्टर साहब देखो आपने सजीव फोन काम चालू है और डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जैविक उर्वरकों को आप उपयोग कैसे कर सका था।
0: हाँ तो मैं अपना बात कर रहा था आपा उपयोग की जैविक उर्वरकों का उपयोग तो जहाँ आपा जहाँ आपने खरीफ फसला चाल रही है कि आपने जहाँ पल्सेस क्रोप चाल रही है तो पल्सेस क्रोप आपा काय कर रहा है जो भी दलहनी फसला है बाकी अंदर आपने राइजोबियम नाम को आपने सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक आता है उस जैव उर्वरक को आपने काय करा था कि जहाँ आपने 250-300 ग्राम गुड़ ले लिया आप 102 लीटर पानी में उन अच्छे से गर्म कर लिया ताकि वो अच्छे से बीक अंदर गुड़ जाए और एक आपने गोल बन जाए बढ़िया और बीक अंदर आप 200 ग्राम को पैकेट आया करे राइजोबियम जेपोनिकम नाम से आए थे जी आप सोयाबीन के लिए यूज करा तो राइजोबियम जेपोनिकम आता है और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग इसकी स्पीसीज आती है ताकि वो अपने यूज करें और उसकी जो जो भी नाइट्रोजन की कमी है या फिर जो सूक्ष्म जीव अपना जो फर्टिलिटी है उसकी बढ़ा सके।
1: डॉक्टर साहब देखो आपने समय से बंधे हो तो आप वहाँ के चौहान पधारिया और आपने अच्छी जानकारी दी एक लाख बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: मायो ई कार्यक्रम का प्रायोजक था कृषि विज्ञान केंद्र अंता जिला 12। आज तो आपने चौपाल में कत्ते भगत कौन है किसान मायो आज चाला तब तय गणी गणी राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 102.3.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर, और आइए इसी क्रम में सुनिए पहला लोकगीत चंचल काबरा की आवाज में।

0: लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम माटी के स्वर में अगला लोकगीत सुनिए 11C बाई की आवाज में।
1: आ तमारी

0: श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और YouTube लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
0: लीजिए श्रोताओं, फिर से चलते हैं लोक संगीत की ओर। सुनवाते हैं आपको लता देवी का गाया हुआ ये लोकगीत।

श्रोताओं, इसी के साथ राजस्थानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं समाप्त होता है। FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ।

श्रोताओं, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। रात्रि के 8 बजे हैं और अब आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

पहला गीत चित्रपट संगीत में आपको सुनवा रहे हैं राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज में फिल्म माई नेम इज खान से।

लीजिए श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जब तक है जान से। गुलजार के लिखे इस गीत को आवाज दी है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने, संगीत ए आर रहमान का।

लीजिए श्रोताओं, अगला गीत चित्रपट संगीत में सुनिए, नीति मोहन, सलीम मर्चेंट और शेखर रवजियानी की आवाजों में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। गीत के बोल अन्विता दत्त के और संगीत विशाल शेखर का।

0: श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और YouTube लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7008। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।
0: लीजिए श्रोताओं, सुनिए चित्रपट संगीत में अगला गीत, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म टू स्टेज से। आवाजें अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन बनाई शंकर एहसान लोय ने।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

श्रोताओ, इस वक्त आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत का अगला गीत, जिसे हमने लिया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में फिल्म दिलवाले से। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और धुन बनाई प्रीतम ने।

और लीजिए श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की युगल आवाजों में फिल्म तमाशा से। गीत के बोल इरशाद कामिल के, संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, फिल्म तमाशा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 102.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा।

0: पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया

0: प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 102, 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर, 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातों बातों में।

नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम बातों बातों में मैं आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यादों से जुड़ी हुई यादें, कुछ मीठी कुछ अनमोल।

श्रोताओं, कहते हैं इंसान जहां भी चला जाए, जो भी हासिल कर ले, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ चलती हैं। कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, कुछ आंखों में नमी, और कुछ हमें फिर से उसी दौर में पहुंचा देती है जहां हम कभी जी चुके होते हैं। तो आइए, आज के सफर में हम यादों की गलियों में चलते हैं फिल्मी गीतों के साथ।

श्रोताओं, यादों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये कभी पुरानी नहीं होती। बरसों बाद भी कोई गीत, कोई खुशबू या कोई रास्ता अचानक हमें बीते दिनों में ले जाता है। कभी बचपन की याद, कभी दोस्तों की याद और कभी किसी अपने की याद। इसी एहसास के साथ सुनिए ये अगला गीत।

श्रोताओं, बचपन शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय होता है। न जिम्मेदारियों का बोझ, न समय की चिंता, बस खेल, दोस्त और ढेर सारी शरारतें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर उन दिनों को याद करके मुस्कुरा देते हैं।

और श्रोताओं, जहाँ बात यादों की हो रही है तो यादें सिर्फ लोगों की नहीं होती, जगहों की भी होती है। एक पुराना घर, कोई स्कूल, कोई गली या कोई पेड़ भी यादों का हिस्सा बन जाता है।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते समय के साथ दूर हो जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी दूर नहीं होती। कभी कोई दोस्त याद आता है, तो कभी कोई ऐसा इंसान जिससे बरसों से मुलाकात नहीं हुई।

और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों का ये सफर जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने

श्रोताओ, इस समय आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ, सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम बातों बातों में, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ यादों से जुड़ी। तो श्रोताओ, यादों का एक रंग प्रेम भी होता है। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान और पहली बातचीत, ये सब यादों के खजाने में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं।

श्रोताओं, कई बार कोई पुराना गीत सुनकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। संगीत में ये अद्भुत शक्ति होती है कि वह वर्षों पुरानी भावनाओं को भी जीवंत कर देता है।

श्रोताओं, कुछ यादें हमें हौसला भी देती हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब बीते हुए अच्छे पल हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।

और इसी तरह समय बीतता रहता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे दिल में एक खास जगह बनाए रखती हैं।

श्रोताओं, यादें हमारी जिंदगी की वह पूंजी है जो कभी कम नहीं होती। इन्हीं यादों में हमारे अपनों की हंसी है, हमारे सपने हैं, हमारी सफलताएं हैं और हमारे संघर्ष भी। यादें हमें अतीत से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरणा भी देती है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत इसी भावना के साथ।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम बातों बातों में यहीं समाप्त होता है। FM 102.103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। रात्रि के 10 बजने को हैं, अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नजारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नजर में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

और शाम का ढलना वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से हर रात हो गई।

से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आजादी से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

खफा होना भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

बदलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बाद सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं। ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी, थी धन्य जवानी।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: FM 102-103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावना

0: संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said, when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
2: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, a

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश हैं?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना

0: ऐसा लगता है खत्म हो गया है, कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा, अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के

0: अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी, और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी, और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है, और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को। जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम है कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: तो ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो

0: 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे. वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें.
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं. नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है. बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है.
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे. जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई. दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो. सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी. जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं. धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं. पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए.
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई.
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता. बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है. किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प.
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है.
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं.
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही जनता जान. देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है. इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है.
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते.
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान. अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है.
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है. उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर. लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया. एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था. PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे. उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी. कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया. सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था. मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है. निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है. और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं.
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह पर. लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं. जनता बहुत समझदार

0: हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को।
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें, और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की

0: संभावना है। और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना मैं सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे काल

0: खंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए, बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो

0: स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ AR VR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है। तमाम बदलाव

0: आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए और उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

FM 102 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।